सुप्रभात। रेडियो एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 47 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से

0: अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में 3रे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम ओ वंदना।

रूम रूम में बस अगर कुछ नाम है तो वह है राम का। राम जो हर प्राणी में घट घट वासी हैं, अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप्त हैं, और वे करुणा के सागर भी हैं। जब भी किसी भक्त ने उन्हें स्मरण किया, याद किया, वो अपने भक्तों से भला कहाँ दूर रहते हैं। तभी तो भक्त वत्सल भी कहलाते हैं, और भक्त का भी तन मन रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ राम ही वास करते हैं।

तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हम सब की वास्तविक संपत्ति को लूटा करते हैं, और इन पांचों लुटेरों को हम अपने साथ रखते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, ये हमें लूटते रहते हैं। इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे एक दिन।

श्री राधे कृष्ण की अगर लीलाएं हम उन्हें सुने तो वो अनंत हैं। और ब्रज में तो यहाँ कण कण में राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, छुपी हुई हैं, भक्तजन उन्हें महसूस करते हैं। अब चाहे वो बांसुरी की लीला हो, गौचरण लीला हो, है ना, माखन चुराने की लीला हो, कोई भी लीला हो, रास रचना, रास रचाया कान्हा ने ब्रज में। हम यहाँ अगर बांसुरी की बात करें और वो बांसुरी कान्हा को इतनी प्रिय है कि हर वक्त वो उनके अधर पर रहती है, और ये बात कभी कभी राधे रानी को अखर जाती है, पर बांसुरी जो है वो इष्टलाती है है ना। अब देखो कितना सुंदर ये इस भजन में आप सुनेंगे, महसूस करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत सुरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा आपने जिन गायक सुर में भक्ति परक रचनाएं सुनी वे गायक सुर थे नरेंद्र चंचल और साथ ही अनूप जलोटा और राजेंद्र मेहता के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आज सफलता का मूल मंत्र संबंधी विचार। स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का है।
1: आज फिर क्षितिज के पार से सूर्य झांक रहा है, ठीक कल की तरह। हर दिन उसका यही क्रम। वृक्षों की हरी हरी पत्तियों से भरी शाखाओं पर सूर्य ने लाल गुलाल सा बिखेरा है। कल रात अंधेरा था, इसका मलाल तक उसे नहीं है। हर सुबह हर शाम इस साथी को देखते हैं हम, पर क्यों बीते हुए कल की चिंता में अपने हर आज की आहुति चढ़ा देते हैं। कल के अपराधों का दंड भोगता ये आज, कल की चिंता में घुलता हुआ ये आज, आने

0: कल कल के सपनों में खोया ये आज, एक एक क्षण कर मिटता हुआ ये आज, कौन इसकी सुध लेगा? अतीत की गरिमा और भविष्य की योजना आज की कीमत पर चुकाते हैं हम। सागरों में ज्वार चढ़ते हैं, उतर जाते हैं, रात कैसी भी हो ढल जाती है, वक्त सभी घाव भर देता है, लेकिन दाग तो रह ही जाते हैं, और वे जीवन भर ये याद दिलाते हैं कि ये घाव किसने और कब हमें दिए थे, क्यों दिए थे, क्यों दिए थे का प्रश्न तो सदैव अनुत्तरित ही रहता है। इसी जीवन में, इसी धरती पर अनेकानेक ऐसी विभूतियां हुई हैं जिन्होंने इतना काम किया है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है, कैसे कोई एक जीवन में इतना अधिक काम कर सकता है। ये काम लेखन का हो, समाज सेवा का हो, अनुसंधान का हो या कोई और काम, कैसे कर पाए होंगे वे लोग, आइए एक क्षण रुके और सोचें। उनके भी वर्षों में इतने ही दिन थे, दिनों में इतने घंटे थे, फिर कैसे कर सके वो सब इतना, कैसे कर सके इतना कार्य? आजीविका की चिंता में या उसको ही पूरा करने में उन्होंने भी हमारी तरह प्राणपण से प्रयास किया होगा, जीवन के दायित्व भी निभाए। फिर ये एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न हो, उत्तर है, हमारे पास है, आवश्यकता केवल उसे तलाश करने की है। सृजन का ये अंकुर किस पाषाण के पीछे छुपा है? दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी चिंताओं की राइयों के बीच खिरे होने वाला एक पर्वत, इसी की किसी खोह में छिपा है वो गुलाब जिसमें एक महक है, एक ताजगी है, जीवन का सौंदर्य है और मानवीय कोमलता है। कुछ न होने के विशाल रेगिस्तानों के बीच अपने अस्तित्व का एक नखलिस्तान है, सुंदर, मनोहारी, मौसम की शिराओं में हरापन खोल देने का संकल्प है। ये गुलाब दिवा चरणों पर चढ़े तो भक्ति में ढले, केश पाश में जगह पाए तो श्रृंगार प्रेम की धारा बहा दे, नन्हे मुन्ने के हाथ लगे तो जिज्ञासा और हर्ष का केंद्र बन जाए। ये गुलाब कहीं आसपास ही है, अपने पूरे प्रयास से इसे खोज लेने की आवश्यकता है। भरे पूरे वृक्ष का विस्तार एक बीज में समाया रहता है, हर बीज में ताकत है कि सच्चाई की माटी का संपर्क मिले, अनुभव की धूप और प्रोत्साहन का अवसर हवा पानी के मिलने पर भी वो भी एक वृक्ष बन सकता है। बीज को मखमली डिबिया में सजा दो तो वृक्ष नहीं बन सकता, कूड़े के ढेर में भी यह अवसर उपलब्ध नहीं होगा। इसके लिए जीवन की सच्चाई से सीधा साक्षात्कार होने की जरूरत है। पत्थरों के नीचे अंकुर पानी के स्रोत छिपे रहते हैं, बिना प्रयास और लगन उसको पहचान पाने की दृष्टि के उसको पाया नहीं जा सकता, जबकि वो वही है। नाभि में कस्तूरी लिए अपनी ही गंध के मोह में भागने वाले क्या रुककर तलाश करेंगे कि सुगंध का ये भंडार उनके अपने अंदर है? अपनी क्षमता को पहचानना और उसे सही दिशा में मोड़ देना, यही तो है सफलता का मूल मंत्र।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु क्रम में सफलता का मूल मंत्र संबंधी विचार, स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

आप अभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर सुरेश वाडेकर का था, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे प्रातः 7

बजकर 31 मिनट पर कार्यक्रम ब्रज माधुरी में आज कवि मुखोत्सव क्रम में कवि गोपाल प्रसाद उपाध्याय का काव्य पाठ। दोपहर 12:30 का समय रहेगा ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे डोरीलाल दीक्षित। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत धरती की पुकार हरा भरा हो संसार। ब्रज दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 9:30 का। कार्यक्रम आबो हवा प्रसारित किया जाएगा 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव जानकारी देंगी खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय से संबंधित। बहने कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोग दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंशु आरोग्य क्रम में आज जानकारी देंगी छोटे बच्चों में बढ़ता मोटापा इस विषय से संबंधित। एनसीईआरटी एवं सीआईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 2:30 उमंग का। युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में पुलकित आचार्य काव्यांकुर क्रम में काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनिएगा 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और पशु पोषण में खनिज लवण विषय से संबंधित चर्चा। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से मृणालिनी दीक्षित की ली गई भेंट वार्ता आप इसी कार्यक्रम में सुनेंगे। विषय होगा पशुओं में अफरा रोग बचाव और उपचार।

0: फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन सुनिएगा संध्या 6:45 पर, संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मोहनलाल प्रेमी की वार्ता, विषय होगा ब्रज वसुंधरा के गौरव महाकवि नवनीत। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा 7:31 पर, और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिन में आप 12 भी सुन सकते हैं, कार्यक्रम गीत बात SMS के अंतर्गत। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, खेती की बातें। आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से जानकारी। विषय है खरीफ की सब्जियों में पोषण प्रबंध। तो आइए सुने ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, वर्षा ऋतु के मौसम में जो भी साग भाजी लगाई जाएगी उसमें खाद उर्वरक पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। फसल में दी जाने वाली खाद और उर्वरक की मात्रा भूमि के प्रकार और उर्वरा शक्ति पर काफ़ी कुछ निर्भर करती है। यदि उर्वरकों की निश्चित मात्रा निर्धारित समय पर दी जाए तो उसी दिशा में फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। अच्छे उत्पादन के लिए बुवाई से 2 पहले ही आपको 20-25 गोबर की सड़ी हुई खाद भली बात से बखेरद करके समान रूप से खेत में मिला देनी चाहिए। सामान्यतः सभी सब्जियों में फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन उर्वरक की आधी मात्रा को रोपाई से 1 पहले खेत में अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बैंगन में रोपाई के समय ही नत्रजन फास्फोरस और पोटाश प्रत्येक की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और खड़ी फसल में रोपाई से क्रमशः 30 और 60 दिन बाद प्रत्येक बार में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर

0: से नत्रजन का बुरकाव किया जाता है। अगर बैंगन की संकर किस्म की रोपाई की जा रही है तो उसके लिए 200 किलोग्राम नत्रजन, 150 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटाश की जरूरत पड़ती है। मिर्च के लिए रोपाई से पहले 40 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश को खेत में मिला दिया जाता है। जब आपकी फसल खड़ी हो जाती है तो रोपाई के करीब 30 दिन बाद और 60 दिन बाद 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नत्रजन का बुरकाव किया जाता है। भिंडी की फसल में 100 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की जरूरत पड़ती है। लोबिया और सेम के लिए प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय 20 किलोग्राम नत्रजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस पर्याप्त रहता है। सभी कद्दू वर्गीय फसलों को पोषक तत्व तो देने के लिए नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश प्रत्येक 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थालों में डाल करके बुवाई के पहले मिट्टी में उन्हें मिला देना चाहिए। इसके अलावा बुवाई के 40 से 45 दिन बाद 20 किलोग्राम नत्रजन का बुरकाव सावधानी पूर्वक पौध के चारों ओर करना चाहिए ताकि उर्वरक पौधे के सीधे संपर्क में न आए। दूसरी बात, जिन फसलों की रोपनी करनी है उसमें रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए जिससे पौधे जल्द जड़ पकड़ लेंगे। बरसात होने पर आवश्यकता के अनुसार करीब 10 से 15 दिनों के अंतराल पर उसमें सिंचाई भी करते रहना चाहिए। अब बात आती है कि इनके कितनी दूरी पर इनको रोपा जाए। बैंगन को 60 बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर संकर बैंगन है तो 90 बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मिर्च को 45 बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, भिंडी को 45 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, लोबिया को 45 बाई 20 सेंटीमीटर, सेम को 2 मीटर बाई 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, लौकी को 2 मीटर बाई 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, तरोई को 1.5 मीटर बाई 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, कद्दू को 2 मीटर बाई 75 सेंटीमीटर की दूरी पर और करेला को 1.5 मीटर बाई 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इनको बोया जाना चाहिए। जहाँ तक बीज दर का सवाल है तो कद्दू कुल की सब्जियों में करीब 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, सेम में 8 से 10 किलोग्राम, लोबिया में 18 से 20 किलोग्राम, भिंडी में 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है।
1: आप सुन रहे थे अभी कार्यक्रम खेती की बातें, इसमें जानकारी डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से। विषय था खरीफ की सब्जियों में पोषण प्रबंध। और अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस अब से कुछ ही देर में।

अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म नव दुर्गा का ये गीत। अंजुम जयपुरी की इस रचना को संगीतबद्ध किया था संगीतकार SN त्रिपाठी ने।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में आपने सुना अभी शकील बदानी की इस रचना को, कैसे कहूँ, फिल्म से ये गीत था और संगीतबद्ध किया था SD वर्मन ने। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

शमशाद बेगम की आवाज़ में पतंगा फिल्म के गीत को। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत। और अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का ये अगला गीत।

राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को आवाज़ दी थी तलत महमूद साहब ने और संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। फिल्म थी देखो कबीरा रोया। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: मीना कपूर, सुरैया और सुंदर कौर की आवाज में आपने सुना फिल्म प्यार की जीत का ये गीत। लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया था हुस्नलाल भगतराम ने। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अगला प्रसारण अब से कुछ ही देर में।
1: मैं किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी। आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, मानव वन्य जीव द्वंद को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक प्रस्तावित सत्र के दौरान चर्चा और मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाए गए प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों के लिए जारी किया 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाए गए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए

0: संकल्पित है कि हर आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां प्रत्येक नागरिक ये विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ वो भी तैयार है।
1: आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाले जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं, अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन के गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया।
0: इस अवसर पर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने NCPI को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट NCPI को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। NCPI हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को कल प्रशासक बना दिया। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया।
4: प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बना दिया गया है। सामान्य तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद खंड विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से ब्लॉक प्रमुख आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन सामान्य रूटीन काम करते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख किसी नीतिगत मामले से संबंधित प्रस्ताव DM के माध्यम से शासन को भेजेंगे। शासन स्तर पर ही अंतिम मोहर लगाई जाएगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का कल लखनऊ में समापन हो गया।
5: शिविर के समापन अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की मुख्य प्रेरणा शक्ति हैं। श्री खड़से ने जिला युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सेवा समर्पण और सामूहिक प्रयास की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शिविर में

0: हुई चर्चाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया। यह शिविर युवा नीतियों को और प्रभावी बनाने तथा नशा मुक्ति जैसे अभियानों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए कल सिद्धार्थनगर के इटवा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। अमरोहा जिले के बछरायू थाना

0: के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए कल सिद्धार्थनगर के इटवा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। अमरोहा जिले के बछरायू थाना क्षेत्र में गजरौला मार्ग पर कल शाम हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब ओवरटेकिंग के दौरान बाइक सवारों और कैंटर के बीच टक्कर हो गई। हमारे अमरोहा प्रतिनिधि ने बताया कि टक्कर के बाद कैंटर भी अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए खेत में पलट गया, जिसमें कैंटर सवार 3 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में कल रात मूसलाधार बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिरने से उसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अधिकांश जिलों में कल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में आज सुबह हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों तथा तराई क्षेत्रों एवं बुंदेलखंड में बारिश का ये क्रम 2 दिनों तक जारी रहेगा।
1: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और बिहार के ऊपर मौजूद है, साथ ही में जो मानसून ट्रफ है हरदोई और बनारस से पास हो रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई लखनऊ समेत, और ये सिलसिला अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली जो तराई बेल्ट है वहां पर भारी वर्षा की संभावना है, जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर भारी वर्षा की भी संभावना है।
0: इस बीच जम्मू कश्मीर में भी खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा कल से रोक दी गई। मौसम ठीक होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अमरनाथ यात्रा का समापन अगले माह 28 अगस्त को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, मानव वन्य जीव द्वंद्व को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक प्रस्तावित सत्र के दौरान चर्चा और मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों के लिए जारी किया 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: अब आरंभ हुए है आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

0: श्रोता साथियों कैसे हैं आप, बढ़िया हैं कि नहीं, स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं जो बताओ पहले, है ना। अब देखो भाई, मौसम तो अपनो ऐसो असर दिखाए रहे है कि जा तरी आते गर्मी पड़ रही है, उमस है रही है। बातें तो देखो, हम सब जो है पशु पक्षी सहित सब ऐसो कौन प्राणी है जो अकुलाए ना रहो, व्याकुल ना है रहो है। उमस तो ऐसी है कि बस कहा के वो, है ना। तो अब ऐसे में आप जो हैं, हम सब जो है अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, है ना। या मौसम में बहुत ही जल्दी जो है सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो ये बहुत जल्दी पकड़ ले है, अपनी गिरफ्त में ले ले है। तो हम सब उनको देखो, अब मौसम तो बचाए के रखनो है और बीमारियों तो बचाए के रखनो है। अब मान लो अगर है ही जाए तो फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें आप, है ना। और ज़रूरी हो तो अपना चिकित्सीय सलाह लें, औषधि लें और अपना ध्यान रखें। स्वास्थ्य को उत्तम रहे वो बहुत ज़रूरी है। कहें है ना कि जब स्वास्थ्य उत्तम होएगा, बढ़िया होएगा, तभी तो फिर जीवन बढ़िया होएगा, है ना। हम अपना कर्म भी बढ़िया तरीके कर सकेंगे। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें आप सब। और वैसे तो देखो, अब मेह तो देखो कब बरसें, घटा तो खूब छाई भई है, हैं घटा छाए हुए और हवा चले है, लेकिन बूंदें कब पर हैं। कबो कबो तो ऐसा जो है लुका छुपियों को खेल खेले हैं कि बस जब जरूरत हो है, आवश्यकता हो है, तो देखो मौसम कैसे आँख में चोली खेले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तो बारिश तो होगी और गर्मियों तो हम सब उनको राहत मिलेगी। तो आप अपने जो है आप मुस्कुराएं और अपने ब्रजमादरी कार्यक्रम को सुने, बड़े प्यार से आनंद लें। और काव्य पाठ कवि मुक्सो क्रम में आज हम आपके ताई लेके आए हैं कवि गोपाल प्रसाद उपाध्याय को काव्य पाठ। बहुत ही बढ़िया, मतलब आज जो ये प्रस्तुत करेंगे पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं, भाव हैं। अब देखो कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ है, तो फिर आओ सुने जे काव्य पाठ।
1: आज में पर्यावरण प्रदूषण पे अपनो काव्य पाठ कर रहे हूँ। मैं सबसे पहले मैं

भारी हे मानव की तैयारी, पर्यावरण प्रदूषित भारी। एक और, झेले दुख सुधर नहीं पावे, हाय हाय डकरावे, झेले दुख सुधर नहीं पावे, रहे प्रदूषण रोग जनक, रहे प्रदूषण रोग जनक, या कूनर स्वयं बढ़ावे, झेले दुख सुधर नहीं पावे, कर मन घोरो जहर पवन जल, कर मन घोरो जहर पवन जल, अबहू नहीं सकुचावे, सबको बुद्धि प्रदान करे नर, सबको बुद्धि प्रदान करे नर, याकू को समझावे, झेले दुख सुधर नहीं पावे, हाय हाय डकरावे, झेले दुख सुधर नहीं पावे। यही क्रम में मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहे हूं। धरती की चूंदर कू क्यों निज, कर मन ते दाग लगाओ, धरती की चूंदर कू क्यों निज, कर मन ते दाग लगाओ, यह शस्य श्यामला है माता, पच रंग परिधान धराओ, याकू तो रखो संहार यार, याकू तो रखो संहार यार, देशी प्रयोग सो हो दुलार, देशी प्रयोग सो हो दुलार।

खेती हूँ, फसल ले ओ पर मत केमिकल खाद लगाओ। यह सस्य श्यामला है माता पच रंग परिधान धराओ। पॉलीथिन ढेरन ला में है, पॉलीथिन ढेरन ला में है, धरती पे फेंक सिहा में है। नहीं गले सड़े कई बरसन लो, नहीं गले सड़े कई बरसन लो, क्यों धरती धिया जरावे। नहीं गले सड़े कई बरसन लो,

आवें हैं। जेती पृथ्वी है बची भई, पॉलीथिन मुक्त कराओ। जेती पृथ्वी है बची भई, पॉलीथिन

समाधान दियो है, प्राचीन तरीका अपनाओ, प्राचीन तरीका अपनाओ, कपड़ा के थैला सिमवाओ, कपड़ा के थैला सिमवाओ, फल फूल साग अरुदाल भात निर्द्वंद आप घर लाओ, फल फूल साग अरुदाल भात निर्द्वंद आप

पॉलीथिन मुक्त धरा होगी, पॉलीथिन मुक्त धरा होगी, देशी खाद पाए उर्वरा होगी, देशी खाद पाए उर्वरा होगी, फल सब्जी में पहले जैसी अनुपम मिठास तुम पाओ, धरती की चूदर कूं क्यों निज करमन ते दाग लगाओ, यह शस्य श्यामला माता है पचरंग परिधान धराओ। याई क्रम में हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है रहे हो, वाक में एक गीत और प्रस्तुत करूं। पर्यावरण प्रदूषित है भारी, कछु कर लो ठोस उपाय, पर्यावरण प्रदूषित है भारी, कछु कर लो ठोस उपाय, क्यों भौतिकवादी आंधी में फंस के जीवन रहे बिताय, क्यों भौतिकवादी आंधी में फंस के जीवन रहे बिताय, जो कर्म सुधर नहीं पामे गिन ढेरन आफत आमे, जो कर्म सुधर नहीं पावे

तन मन है जाय उदास कि जीवन जल्द नरक बन जाय। पर्यावरण प्रदूषित है भारी कछु कर लो ठोस उपाय। एसी को अति उपभोग व्याप जावे तन में कऊ रोग। एसी को अति उपभोग व्याप जा

मचा में जाते ध्वनि प्रदूषण बढ़े, कान की झिल्ली तक फट जाए। जाते ध्वनि प्रदूषण बढ़े, कान की झिल्ली तक फट जाए। क्यों भौतिकवादी आंधी

बिताए। स्वच्छ रखो नदी कुंड, डारो मत कूड़े के झुंड। तुम स्वच्छ रखो नदी कुंड।

वन जाय। पर्यावरण हेतु कूड़ो फैला नर काली असो बन जाय। क्यों भौतिक वादी आंधी में फंस के जीवन रहे बिताय। मत हरे वृक्ष को काटो है मानव जाति पे चाटो। मत हरे वृक्ष को काटो है मानव जाति पे चाटो। मानव जाति वृष्टि अना

0: उस चक्र न फंस जाए। पर्यावरण प्रदूषित है भारी, कछु कर लो ठोस उपाय। क्यों भौतिकवादी आंधी में फंस के जीवन रहे बिताए।
1: वाकई में साथियों, कितनों बढ़िया जो है हम सबन के ताहीं, मानव जाति के ताहीं कवि महोदय ने संदेश दियो अपने काव्य पाठ ते। और आपको बता दें कि आज हते कवि गोपाल प्रसाद उपाध्याय। वाकई में यह मैं कह सकें कि हम सब जो हैं पर्यावरण के प्रति अगर अभू नहीं चेतेंगे, अभू नहीं जागेंगे तो बताओ कब जागेंगे। हैं अब देख रहे हैं कि कितनों जो है प्रकृति जो है बहुत ही बदलाव में आ चुको है। परिवर्तन आप देख ही रहे, हालांकि परिवर्तन है जाते संसार है, परिवर्तन तो संसार का शाश्वत सत्य है, नियम है। लेकिन साथियों, परिवर्तन अगर वो सकारात्मक है तो परिवर्तन बढ़िया है ना। बदलाव अगर हम सबन के हित में है, प्रकृति के हित में है, सभी जीव जंतु के हित में है, सबके जीवन के ताई अगर हित में है तो वो बदलाव जो है बढ़िया है ना। तो अपने देखो कैसे बढ़िया संदेश या कविता में है, तो कि मतलब पेड़ ना काटें, हैं एसी को प्रयोग ना ज़्यादा करें, और अपने आसपास जो कूड़ों करकट है हम सब यातायात नली नदी में या आसपास कहूँ ऐसे ना डाले, ऐसे जल प्रदूषण हो गए हैं। और जब जल प्रदूषित है जाएगा, हवा प्रदूषित है जाएगी, तो बताओ फिर हम लोग जिएंगे कैसे, हैं सांस कैसे लेंगे, शुद्ध हवा हमें कैसे मिलेगी, शुद्ध पानी हमें कैसे मिलेगा। जब सब कुछ मिले हुए ना, तो बताओ हम हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कहाँ देके जाएंगे। खैर, तो अपने ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में अपने आगे बढ़ें साथियों, और फिर ये कछुपी लोकगीत सुन लिए जाएं। तो फिर आओ सुने जे लोकगीत।

तो अभी जो है आप सुन रहे थे किसी बढ़िया से सुंदर से लोकगीत या को सुर दे रहे थे पन्ना लाल शर्मा और साथ ही आवाज सुने एक और लोकगीत।

तो अभी आप सुन रहे थे नीरज की आवाज़ में इस लोकगीत को साथियों, और जय लोकगीत के संगे आज को ब्रह्मादरी कार्यक्रम यहीं विश्राम ले। आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी, और समय हो चुका है अगले प्रसारण का आपसे कुछ ही देर में।

0: कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।

0: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके

0: बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मॉल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मॉल्डोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मॉल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला।

0: गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
0: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ते ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

साथियों, आरंभ है फिल्म संगीत और कार्यक्रम का ये पहला गीत गीतांजलि कार्यक्रम का। जी हाँ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं तरह तरह के भावों से भरे हुए रंग बिरंगे स्वशांत

आप सुन रहे थे अभी अर्षा भोसले की आवाज़ में फिल्म सुजाता के इस गीत को। शब्द रचना शायर जनाब मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत SD बर्मन का। और साथियों आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे मोहम्मद अज़ीज़ अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म आदमी खिलौना है का ये गीत। अब साथियों आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म दलाल के इस गीत को बप्पीदा ने संगीतबद्ध किया था और लिखा था प्रकाश मेहरा ने। साथियों, आप आनंद रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम गीतांजलि का, और बहुत ही हम खूबसूरत से गीत आपके लिए लेकर आते हैं। अब देखिए ये अगला गीत किस रंग में रंगा हुआ है, तो पूछो पूछो, नहीं आप सुने पहले फिर बताइएगा, ठीक है।

0: साथियों, आपने अभी सुना हेमलता की आवाज़ में फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। आप आनंद ले रहे हैं साथियों इस वक्त आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि के अंतर्गत। अब देखें ये कौन सा रंग है अगला हमारे कार्यक्रम का।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी

0: आप सुन रहे थे अभी किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मंजली का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इन बोलों को धुन से संवारा था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज का ये कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही साथियों अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ये पर्यावरण कार्यक्रम धरती की पुकार हरा भरा हो संसार। आलेख प्रदीप भारद्वाज का और स्वर राजेश कुमार का है।
1: हरी हरी वो घास उगाती है, फसलों को लहलाती है, फूलों में भरती रंग, पेड़ों को पाल पोस कर ऊंचा करती, पत्ते पत्ते में रहे जिंदा हरापन, अपनी देह को खाद बनाती है, धरती इसीलिए माँ कहलाती है। पृथ्वी मानव का आवास है, पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति द्वारा कुछ चीजें उपहार के रूप में मिली हैं। प्रकृति ने हमें सूर्य, चांद, हवा, जल, धरती, नदियाँ, पहाड़, हरे भरे वन और धरती के नीचे छिपी हुई खनिज संपदा धरोहर के रूप में हमारी सहायता के लिए प्रदान किए हैं। मनुष्य अपनी मेहनत से धन कमा सकता है, लेकिन प्रकृति की धरोहर को अथक प्रयास करने के बाद भी बढ़ा नहीं सकता। प्रकृति द्वारा दी गई ये सभी वस्तुएं सीमित हैं। मेरी गोद में पले जग सारा, धरती माँ जिसने भी पुकारा, कभी मैं चंचल बहती धारा, जिसको हर मिटाने वाला हारा, हर प्राणी की जान हूँ मैं, उसके लिए महान हूँ मैं, कभी सूखा रेगिस्तान हूँ मैं, वही अमिट निशान हूँ।

पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई और इसे कई देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये तारीख उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम होता है। संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस को हर साल मार्च एक्विनोक्स यानी वर्ष का वो समय जब दिन और रात बराबर होते हैं उस समय मनाया जाता है। ये एक परंपरा है जिसकी स्थापना शांति कार्यकर्ता जॉन मक्कोनेल के द्वारा की गई। अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस एक प्रकार का उत्सव है जो कि हर साल पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने का मुख्य कारण पर्यावरण संरक्षण करना है। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियां बांटो सबको, हर दिन पर्व दिखाई दे, खुद भी पेड़ लगाओ इतने, धरती स्वर्ग दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे।

विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के विषय में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन इस बात के चिंतन मनन का दिन है कि हम कैसे अपनी वसुंधरा को बचा सकते हैं। इस दिन लोग धरती की सुरक्षा से संबंधित अनेक बाहरी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे नए पेड़ पौधों को लगाना, पौधे रोपित करना, सड़क के किनारे का कचरा उठाना, गंदगी का पुनर्चक्रण करना, ऊर्जा संरक्षण करना, ऐसे बहुत से काम इस अवसर पर किए जा सकते हैं। गांधी जी का ये भी मानना था कि पृथ्वी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, किंतु लालच की पूर्ति के लिए बिल्कुल नहीं। गांधी जी का मानना था और गांधी जी मानते थे कि पृथ्वी, वायु, जल और भूमि हमारे पूर्वजों से मिली संपत्ति नहीं है, वे हमारे बच्चों और आगामी पीढ़ियों की धरोहरें हैं। हम उनके ट्रस्टी मात्र हैं। हमें वे जैसे मिली हैं, उन्हें उसी रूप में भावी पीढ़ी को हमें सौंपना होगा। तुम पृथ्वी से जो लेते हो उसे वापस कर देना चाहिए, यही प्रकृति का तरीका है। हमें ये ग्रह हमारे पूर्वजों के उत्तराधिकार में नहीं मिला, हम इसे अपने बच्चों से उधार में लेते हैं। एक बार गांधी जी ने दातुन मंगवाई, किसी ने नीम की पूरी डाली तोड़कर उन्हें ला दी। ये देखकर गांधी जी उस व्यक्ति पर बहुत बिगड़े। उसे डांटते हुए उन्होंने कहा, जब छोटे से टुकड़े से मेरा काम चल सकता था तो पूरी डाली क्यों तोड़ी? ये ना जाने कितने व्यक्तियों के उपयोग में आ सकती थी। गांधी जी की इस फटकार से हम सभी को सीख लेना चाहिए। प्रकृति से हमें उतना ही लेना चाहिए जितने से हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। पर्यावरणीय समस्याओं से पार पाने का यही एकमात्र रास्ता है। जीवन हमें बचाना है, पृथ्वी को हरा बनाना है। धरा नहीं होगी तो सब धरा रह जाएगा।

जरूरी स्थानों पर नए पौधे रोपित करें। अपने परिवार के साथ कुछ बाहरी गतिविधियों में शामिल हों, जैसे कि पेड़ पर पक्षी के लिए घोंसला बनाना और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में चर्चा करना। भूमि और जल प्रदूषण को टालने के लिए प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, पुराने सामानों का पुनर्चक्रण और दोबारा प्रयोग करने के बारे में अपने बच्चों को सिखाना, सड़क, पार्क और दूसरी जगहों से गंदगी हटाने में भाग लेना। मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेना, जैसे गीत गायन, जो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित हो, और इस उत्सव में शामिल होने के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करें। इतना ही नहीं, शैक्षणिक सत्रों में भाग लिया जा सकता है, जैसे सेमिनार, परिचर्चा और दूसरे प्रतियोगी क्रियाकलाप, जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित हों। पर्यावरणीय रंगों को दिखाने के लिए हरे, भूरे या नीले रंग के कपड़े पहनने के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। लोगों को शिक्षा देनी है कि हर दिन पृथ्वी दिवस है, इसलिए हर दिन उन्हें धरती का ध्यान रखना चाहिए। हर साल एक पेड़ जरूर लगाएं और धरती को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में सहायता करें। आप दूसरों को भी पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक कर सकते हैं। जन जन से ये कहना है, वृक्ष धरा का गहना है, हरे वृक्ष से वायु प्रदूषण का संहार दिखाई दे, हरियाली और प्राण वायु का बस अंबार दिखाई दे, जंगल के जीवों के रक्षक बनकर तो दिखला दो, जिससे सुखमय प्यारा प्यारा ये संसार दिखाई दे।

कैसे हम अपनी वसुंधरा को बचा सकते हैं। धरती को बचाने के ऐसे अनेकों तरीके हैं जिसे हम अकेले और सामूहिक रूप से अपना कर योगदान दे सकते हैं। इसके संरक्षण के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी व्यस्तता में व्यस्त इंसान थोड़ा बहुत योगदान दे तो धरती के ऋण को उतारा जा सकता है। मिट्टी नहीं मिटाओ यारो, मिट्टी में मिल जाओगे। पृथ्वी नहीं होगी अगर, तो बोलो कहाँ तुम जाओगे।

हम सभी जो कि स्वच्छ श्यामला धरा के रहवासी हैं, उनका ये दायित्व है कि दुनिया में कदम रखने से लेकर आखिरी सांस तक हम पर प्यार लुटाने वाली इस धरा को बचाए रखने के लिए जो भी कर सकें करें, क्योंकि ये वो धरती है जो हमारे बाद भी हमारी निशानियों को अपने सीने से लगा कर रखेगी। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये हरी भरी और प्रदूषण मुक्त रहे, और इसे ये उपहार हम और आप ही दे सकते हैं।

आप अभी सुन रहे थे पर्यावरण से संबंधित ये कार्यक्रम धरती की पुकार हरा भरा हो संसार। आलेख प्रदीप भारद्वाज का था और स्वर राजेश कुमार शर्मा का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
1: गत दिनों चंदौली के राजकीय आईटीआई कॉलेज रेवसा में भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के स्टार्टअप पहल के अंतर्गत एक दिवसीय स्टार्टअप कार्यशाला तेजस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इन्वेस्टमेंट यूपी, स्टार्टअप इन यूपी, अटल इनक्यूबेशन सेंटर BHU और जिला प्रशासन चंदौली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ बतौर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती के चित्र माल्यार्पण कर किया। जिला सेवा योजन अधिकारी गौरव सिंह ने कार्यशाला की रूपरेखा और इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जनपद में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने और युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया। कार्यशाला में स्टार्टअप इन यूपी की ओर से आए प्रशांत रंजन ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्टार्टअप नीतियों पर विस्तृत चर्चा की और युवाओं को मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। विगत दिनों चंदौली दौरे पर आए सूबे के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने 3,55,00,000 की लागत से नव निर्मित उप निबंधक एवं AIG निबंधन कार्यालय का लोकार्पण किया। इस नए और अत्याधुनिक सुविधा युक्त कार्यालय भवन के बन जाने से अब आम जनता को रजिस्ट्री और स्टाम्प संबंधी कार्यो में बड़ी सहूलियत मिलेगी। गत दिनों चंदौली में पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर स्थित महिला उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का लोकार्पण अध्यक्षा चित्रा सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं में मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरत पर सेनेटरी नैपकिन की सहज उपलब्धता के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। विगत दिनों चंदौली में सूबे के कैबिनेट मंत्री श्रम एवं सेवा आयोजन विभाग अनिल राजभर ने चकिया के जलेबिया मोड़

0: आसपास वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने जनपद वासियों से इस महत्वपूर्ण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने पौधरोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। उन्होंने पीपल, पाकड़ और बरगद के तीन पौधे का एक साथ रोपण कर इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि केवल पौध लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका संरक्षण करना भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद व भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत चंदौली के नियंताबाद में स्थित तालाब पर पेड़ लगाकर लोगों को पर्यावरण का संदेश दिया। वन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ने आम अमरूद का पेड़ लगाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने सभी कर्मचारियों व आम जन से प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की भी अपील की। उन्होंने जिले के सभी स्कूलों, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर वृहद वृक्षारोपण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को एक दिन में 35 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के सापेक्ष उससे अधिक पौधों को लगाया गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। चंदौली में उर्वरक की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया में आ रहे मामले पर जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि
1: एक एक किसान को उनकी जमीन के आकार पर जरूरत भरी के आधार पर खाद उपलब्धता कराना हमारी जिम्मेदारी है और हम उपलब्ध कराएंगे। और सभी किसान भाइयों से और रिटेलर्स को भी मैं कह रहा हूँ कि वो निर्धारित दर पे ही उर्वरक की बिक्री करें और अपने अभिलेखों पे उसका जो है अंकित करें, और जिस फसल के लिए ले रहे हैं उस फसल को अपने अभिलेख पे अंकित करें। इस एक सीजन के लिए एक हेक्टेयर पे 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी एक किसान के लिए अनुमन्य है। इसलिए कोई भी किसान भाई किसी भी भ्रम में न रहे, जनपद में पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। हम लोग इसको बराबर निगरानी बनाए हुए हैं।
0: उन्होंने किसानों से अपील की कि जैव विविधता व मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरित खाद का अपने खेतों में इस्तेमाल करें।
2: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का।
3: जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुसरण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं छात्रों के बेहतर शैक्षणिक विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जनपद के राजकीय इंटर कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में केवल पाठ्यक्रम पूरा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि छात्रों के सीखने की क्षमता, विषयों की समझ एवं शिक्षा परिणामों में निरंतर सुधार सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जनपद की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में जनपद में औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के समाधान तथा निवेश अनुकूल वातावरण तैयार किए जाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। जनपद मुख्यालय के आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर का 155वां स्थापना दिवस समारोह एमएलके पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में मनाया गया। समारोह में सांस्कृतिक, साहित्य, सामाजिक सरोकार एवं प्रतिभा सम्मान से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से 1 जुलाई को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर से जन जागरूकता वाहन रैली का शुभारंभ किया गया। रैली को जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जिले में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय दुसा में जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों की उपस्थिति में उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। प्रदेश में यह अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य 100% नामांकन सुनिश्चित करना एवं ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। जनपद में पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण विस्तार एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण एवं पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग द्वारा बृहद वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया। इस वर्ष अभियान का मुख्य संदेश उठो बढ़ो, हाथ मिलाओ, माँ के नाम पेड़ लगाओ तथा एक पेड़ माँ के नाम रहा। जिले में गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड बलराम

0: द्वारा 13 जुलाई से 15 जुलाई तक बीमा पेंशन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर आधारित 3 दिवसीय कृषक गोष्ठी एवं मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक पलटू राम ने किया। उन्होंने किसानों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
1: सामाजिक सुरक्षा कवच ये सीधे सीधे हम किसानों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से कवर्ड करके उनके सीधे सीधे परिवार को लाभ दिलाने की योजना है। बहुत कम प्रीमियम में हम किसान परिवार को लाभान्वित करने का काम करते हैं।
0: जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में वायलेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे विकास खंडों के चयनित 44 ग्रामों के समग्र एवं सतत विकास से जिला स्तरीय समिति की बैठक कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में इन ग्रामों को विभिन्न विकास मानकों पर आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित 10 प्रमुख इंटरवेंशन क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा करते हुए विभागवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। जिले में संभावित बाढ़ एवं जल भराव की स्थिति से जनसामान्य को सुरक्षित रखने तथा राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन, अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बाढ़ के दृष्टिगत तहसील बलरामपुर सदर में संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का व्यापक जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ खंड सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बताया कि
2: हमारे यहाँ टोटल 19 पार्ट बन वाले हैं और 32 पार्ट चौकी है। इसको एक टोल फ्री नंबर जारी है 1077। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता किसी भी समय न सिर्फ बाढ़ के टाइम में अन्यथा किसी भी सर्वे अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है आपदा से संभावित तो वो उस पर सीधे बात कर सकते हैं और वो हम तक पहुँचेगी। हम शीघ्र ही उनको सहायता।
0: जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रमुख चौराहों पर विशेष जन जागरूकता एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वीर विनय चौक, बलरामपुर सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने स्वयं उपस्थित होकर वाहन चालकों एवं आम जन को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत जानकारी। विषय है खाद्य पदार्थों में मिलावट और जानकारी दे रही हैं डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं और हमारे यहाँ एक प्रचलित कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, यानी कि हमारे जो प्राचीन काल में जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने ये सीधा सा संबंध हमारे और हमारे भोजन के बीच में स्थापित किया है कि जैसा हम खाना खाएंगे वैसे हमारे विचार होंगे। और ये हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ तन में एक स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा मस्तिष्क का विकास अच्छा होगा, और मस्तिष्क का विकास अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, और समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम विकासशील देश से जो है एक विकसित देश में धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं, वैसे वैसे मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक उपभोक्तावाद संस्कृति में हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। तो इस ज्यादा लाभ कमाने की प्रवृत्ति, या हम कहें कि हमारी लालची प्रवृत्ति ने जो है मिलावट खाद्य पदार्थों में मिलावट जो है करने को जो है एक बड़े कारोबार में परिवर्तित कर दिया है। और आज जो है हम कह सकते हैं कि शायद ही ऐसा कोई खाद्य पदार्थ हो जिसमें कि मिलावट नहीं है। लेकिन ये खाद्य पदार्थ में जो मिलावट की जाती है, अगर ये इस तरह से की गई है कि उसमें कुछ हानिकारक रसायन मिलाए गए हैं या कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ मिलाए गए हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, तो वो हमारे लिए हानि तो पहुंचाएंगे लेकिन साथ में वो कई बार मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। अगर आपको याद हो तो 2013 में जो है बिहार में छपरा जिले में मिलावटी खाने की वजह से लगभग 22 जो है बच्चों की मृत्यु हो गई थी। हम दिन प्रतिदिन अखबार में पढ़ते हैं या समाचार पत्रों में न्यूज में हमें सुनाई देता है कि मिलावट की वजह से काफी लोग बीमार हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। और अभी त्योहार निकला है, राखी का त्योहार हम सबने आपने मनाया है, लेकिन इस राखी के त्योहार में आपने देखा होगा कि हम आज से 5-6 साल पहले मावे की मिठाइयों का उपयोग बहुत करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपने पढ़ा कि मावे में जो है यूरिया की मिलावट है या कई बार इसमें जो है कास्टिक सोडा की मिलावट की जाती है या वनस्पति घी की मिलावट की जाती है,

उस वजह से इस मावा जो है दूषित हो जाता है और इस मिलावटी मावे को खाने से जो है बहुत हानि हमारे स्वास्थ्य को पहुंचती है। तो अगर अगर हम कहें कि जैसे प्राचीन काल में भी दूध में मिलावट होती थी, लेकिन उस दूध में पानी मिलाया जाता था जो कि हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन आज जो दूध में मिलावट हो रही है उसमें कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, कास्टिक सोडा के साथ साथ उसमें जो है स्टार्च मिलाया जाता है, सेलुलोज मिलाया जाता है और सबसे हानिकारक उसमें यूरिया मिलाया जाता है। तो ये जब यूरिया युक्त या फॉस्फेट युक्त या कास्टिक सोडा युक्त दूध हम मिलावटी दूध जब हम पीते हैं तो वो दूध हमें फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान करता है। तो सिर्फ दूध ही नहीं, आज हम कोई सी भी चीज देख लें, चाहे घी देख लें। पहले प्राचीन काल में हम घी का उपयोग बहुत करते थे और कहा जाता था कि स्वस्थ रहना है तो घी दूध का उपयोग करें नियमित रूप से। लेकिन अब वो चीज क्योंकि मिलावट जब खाने में हो रही है तो हम उसका प्रयोग जो है

सेलुलोज मिलाया जाता है और सबसे हानिकारक उसमें यूरिया मिलाया जाता है। तो ये जब यूरिया युक्त या फॉस्फेट युक्त या कास्टिक सोडा युक्त दूध हम मिलावटी दूध जब हम पीते हैं तो वो दूध हमें फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान करता है। तो सिर्फ दूध ही नहीं, आज हम कोई सी भी चीज देख लें, चाहे घी देख लें। पहले प्राचीन काल में हम घी का उपयोग बहुत करते थे और कहा जाता था कि स्वस्थ रहना है तो घी दूध का उपयोग करें नियमित रूप से। लेकिन अब वो चीज क्योंकि मिलावट जब खाने में हो रही है तो हम उसका प्रयोग जो है आंख मीच कर नहीं कर सकते। दूध में जो है मिलावट मैंने आपको बताई, इसी तरह से घी में मिलावट, घी में भी जो है रंग की मिलावट की जाती है और रंग की मिलावट के साथ साथ उसमें ऐसे जो है वनस्पति घियों का उपयोग किया जाता है जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कई बार जो है दूध में फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह भी मिलाया जाता है और ये जो है दूध नुकसान पहुंचा सकता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खाद्य पदार्थों में मिलावट मानव स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचाती ही पहुंचाती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के साथ साथ ये पर्यावरण को भी हानि पहुंचाती है। किस प्रकार, किस प्रकार पहुंचाती है कि जिस उद्योग में, उदाहरण के तौर पर ऐसा कोई उद्योग है जहां की दूध की डेयरी है, जब दूध की डेयरी में कास्टिक सोडा है, फॉर्मेल्डिहाइड है या इस तरह के रसायनों का उपयोग मिलावट करने के लिए किया जाता है, तो उस स्थान पर इन रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है और वहां से जो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में ये जो हानिकारक रसायन होते हैं, मिलावट जिनकी की जाती है, ये पानी के माध्यम से हमारे जलीय स्रोतों में पहुंच जाते हैं और जलीय स्रोतों में पहुंचकर उन स्रोतों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

आप सुन रहे थे अभी कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत जानकारी डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव से। विषय था खाद्य पदार्थों में मिलावट। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण।

0: आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह। कार्यक्रम के संयोजक ओपी सिंह।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दिन की शुरुआत अगर सकारात्मक बातों के साथ, अच्छी बातों के साथ की जाए तो वास्तव में इसका हमारे पूरे जीवन पर बड़ा गहरा असर होता है, क्योंकि जैसे जैसे अच्छी बातें, अच्छे विचार हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं, वैसे ही हमें जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है। तो साथियों, आज का हमारा सुविचार है कि एकाग्रता सफलता की कुंजी, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए एकाग्रता बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हम डॉक्टर बनना चाहें, अच्छे एथलीट बनना चाहें, महान गायक बनना चाहें, कोई कलाकार बनना चाहें या एक अच्छे व्यापारी बनना चाहें, हर क्षेत्र में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से एकाग्र होना ही होगा। और इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने जीवन में सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अपनी एकाग्रता पर ही काम किया है, यानी एकाग्र होकर ही उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। अर्जुन एकाग्रता के बल पर ही महान धनुर्धर बने थे। और जैसे ही आप एकाग्र होते हैं तो एकाग्रता के फायदे आपको स्वयं समझ में आने लगते हैं, क्योंकि इससे आप अपने लक्ष्य की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे हों, अपना पूरा मन मस्तिष्क केवल अपने काम पर केंद्रित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से काम में गुणवत्ता भी आती है और बहुत तेज़ी से आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। मन को एकाग्र किए बिना हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम एकाग्र होते हैं तब हम अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में दे पाते हैं और हमें अपनी आशा के अनुरूप उसमें परिणाम भी देखने को मिलते हैं। विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों के लिए बस हम यही कहना चाहेंगे कि पूरी एकाग्रता के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें।

और ऐसी सभी चीज़ों से दूर रहें जो आपकी एकाग्रता को भंग करती हैं, और अपना ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रखें। बस यही कहना चाहेंगे आपसे कि हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो।

ब्रज भूमि मथुरा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला स्थली है। यहाँ की पावन धरा केवल हमारी आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर भी है। इस धरोहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को लेकर कल दिनांक 19 जुलाई 2026 को वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा जिला प्रशासन एवं सामाजिक संस्था हार्टफुलनेस के संयुक्त तत्वाधान में ब्रज वैभव अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान की शुरुआत गीता शोध संस्थान वृंदावन में सामूहिक ध्यान के साथ हुई। माना जाता है कि जब किसी शुभ कार्य का आरंभ ध्यान के साथ किया जाता है तो वो सकारात्मक ऊर्जा, एकाग्रता और सेवा भाव से परिपूर्ण हो जाता है। यही भावना इस अभियान में भी देखने को मिली, जहां दूर दूर से आए लगभग 400 स्वयं सेवकों ने सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया और फिर स्वच्छता के संकल्प के साथ इस अभियान में भाग लिया। ध्यान सत्र के उपरांत स्वयं सेवकों, अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने परिक्रमा मार्ग पर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से ये अपील की कि वे परिक्रमा मार्ग को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें, कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें तथा एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। इस अभियान के अंतर्गत ये संदेश भी दिया गया कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से ही संभव नहीं है यदि हर व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प ले तो ब्रज की पावन भूमि की सुंदरता, उसका वही पुराना वैभव और गरिमा लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं।

0: हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक श्री कमलेश पटेल उर्फ दाजी ने मथुरा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर सभी को जागरूक करते हुए कहा।
1: देख के ऐसा दुख हो रहा है, ये क्या हो गया है जगह को? गंदगी से भरा हुआ, श्वास भी नहीं ले सकते हैं। गंदगी ही गंदगी सब जगह। सब 21 किलोमीटर का जो परिक्रमा वाला मार्ग है वो देख के रोना आता है। हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बताए, कुछ करना चाहिए। यहाँ की पवित्रता उखड़ गई, इसका क्या करोगे आप? कि कैसी नगरी, अब क्या हो गया उसको? इतना गंदगी है, रोना आता है देख के। तो इसके बारे में कुछ होना चाहिए। ये मथुरा वासियों की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की है, समाज की है। अब भगवान में मानो या ना मानो, लेकिन वो वहां पैदा हुए थे, ऐसी पर्सनालिटी, उसको तो साफ रखो। तो आप सब प्रार्थना कीजिए अपने सब सहज मार्ग परिवार के लोग कि वहाँ व्रज वैभव फिर से वापिस लौटे। व्रज की जो रज है उनकी हम सेवा करें और उनको फिर से ईश्वरीय चार्ज से भर देवे। हर कण कण में कृष्ण की रोशनी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पवित्रता महसूस होनी चाहिए। सबको संदेश दो, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो जाने पहचाने अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं, कि चलो मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। अब कई इतनी जगहें हैं जो फॉरेस्ट्स है, उनको साफ करना है, वहाँ नए पौधे लगाने हैं। एक फॉरेस्ट, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा फॉरेस्ट, ये 6 महीने में जितने भी हम पूरे कर सकें सफाई करो। गार्बेज बैग लेके जाओ, उठाओ और वापस अलीगढ़ ले आओ। इधर उधर फेंकना नहीं है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था मुझे लगती है अच्छी होगी। लेकिन

0: प्रोसेस बेटर, और जब ये साफ होगा तब हम नए पौधे लगा सकेंगे। इस मौसम में रेन हार्वेस्टिंग भी करना है, वहाँ पे पानी आता है बह जाता है, आता है बह जाता है, गंदगी और फैलती है, उसको एक जगह पे रखना है। ऐसे दुनिया भर के लोग जो आते हैं वहाँ सीख के जाएंगे। तो ये जो रिवॉल्यूशन जो हम चाहते हैं, आध्यात्मिक एवं एकोलॉजिकल एनवायरमेंटल, सब वहाँ से शुरू होना है। दैट विल स्टार्ट विथ अस। थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजा कांत मिश्र, DIG पुलिस आगरा परिक्षेत्र श्री शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी मथुरा श्री चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा श्री श्लोक कुमार, मथुरा के नए नगर आयुक्त श्री ओजस्वी राज एवं ADM प्रशासन श्री अमरेश कुमार सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आप हैं उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कोऑर्डिनेटर श्री चंद्र प्रताप सिकरवार।
2: ये अभियान उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर प्रारंभ किया गया है, और ये अभियान उन स्थानों पर चल रहा है, यानी स्वच्छता का अभियान वहाँ चलाया जा रहा है जो स्थान तीर्थयात्रियों के आगमन वाले हैं, यानी जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई हैं। तो वहाँ पर हर रविवार को तो नियमित रूप से एक अभियान चलता है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद हम लोग जो है 11 किलोमीटर के वृंदावन परिक्रमा मार्ग की सफाई कर रहे हैं। यह अभियान एक महाअभियान के रूप में है, इससे पहले इतना बड़ा अभियान एक साथ नहीं हुआ था। इसमें सेक्टर वाइज 11 जोन में बांटा गया है, और सभी में एक हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, हमारे उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजा कांत सर हैं। तो हम सब लोग जो है इनके साथ, ये अधिकारियों के साथ 2-3 संस्थाएं और कार्य कर रही हैं, जिनमें हार्टफुलनेस फाउंडेशन है जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके कार्य कर रही है और जागरूकता का कार्य कर रही है। दूसरी संस्था है उज्ज्वल ब्रज, जो पहले से ही परिक्रमा मार्ग की सफाई कराती है। तीसरे जो है सबसे बड़े जो हमें सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं वो नगर निगम ने कराए हैं, वो भी रहेंगे। तो और ये एक संदेश दिया जा रहा है आम जनता को, स्थानीय दुकानदारों को, आने वाले तीर्थयात्रियों को, कि हमें ब्रज को, खासकर परिक्रमा मार्ग को सदैव स्वच्छ रखना है, यही उद्देश्य है। और स्वच्छता का ये अभियान ऐसा नहीं है कि ये एक टेम्परेरी हो या एक समय विशेष के लिए हो, इसको बरकरार रखा जाएगा। और ये एक संदेश जब जनता में जाएगा तो स्वयं जनता अपने आप स्वच्छता के प्रति जागरूक होगी और सफाई करेगी।
1: इसी के साथ इस अभियान को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए आप हैं उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजा कांत मिश्र।
3: दाजी हैदराबाद से यहाँ आए, उन्होंने यहाँ परिस्थितियों को देखा और उन्होंने कहा कि हम ये अभियान आरंभ करेंगे ब्रज स्वच्छता का। प्रेरणा हमें दी उन्होंने कि ये कार्य करना है, और मैं कृतज्ञ हूँ, अभिभूत हूँ कि आप सब जिस रूप में और जनपदों से यहाँ आ करके भगवान का नाम लेके, उनका ध्यान देके इस स्वच्छता अभियान को सफल करने में अपना योगदान कर रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा कि ये जो आप भौतिक रूप से कार्य करेंगे उसका महत्व है, बहुत महत्व है, लेकिन जो संदेश आप देंगे इस कार्य से वो और महत्व का है। आप जो अभी जाएंगे श्रमदान करने, मेरा निवेदन है सफाई करिए, जो भौतिक रूप से आप कर सकते हो ज़रूर करिए, लेकिन साथ में आसपास के लोगों को जागरूक, प्रेम से, सद्भाव से, कोई तिरस्कार नहीं करना किसी का, किसी को छोटा नहीं बताना, हम कर रहे हैं तुम नहीं कर रहे हो, नहीं, ये भाव नहीं रखना है। जो ब्रजवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, जो भक्तगण हैं भगवान के, जो यहाँ आ रहे हैं, उन्हें जगाना, सजग करना, ये एक बड़ा काम होगा। तो अधिक से अधिक लोगों को पैम्फलेट्स दीजिए, उन्हें बताइए कि भगवान के निज धाम में, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के निज धाम में, वृंदावन विशेष रूप से, एक टुकड़ा भी गंदगी का हम फैलाते हैं पाप होता है। हम हाथ जोड़ के प्रणाम करें, भगवान की मूर्ति के आगे भजन गाएं, जब तब यज्ञ करें, और भगवान के निज धाम को दूषित प्रदूषित कर दे तो ये कहाँ का सत्कर्म हुआ। इस संदेश को प्रसारित करना है, दूर तक ले जाना है, ताकि लोग इस बात को समझें। ये बिल्कुल हृदय की बात कहता हूँ आपसे, अपनी और दाजी की भी। जब तक हम भौतिक रूप से स्वच्छता पूरी रूप से यहाँ इस ब्रज क्षेत्र में स्थापित नहीं करते, तब तक मन कहाँ से हमारे स्वच्छ हो जाएंगे। राग द्वेषों से भरा हुआ ये हृदय, ये मन, ये अंतःकरण, इसमें भगवान की प्रतिष्ठा।

0: स्वयं हो जाएगी, स्वयं हो जाएगा। और है नहीं, ये तो गोलोक है, बस हमें एक बार इस अभियान को अपनी तरफ से आगे बढ़ाना है, छोड़ना नहीं अब की बात। और अंतिम बात भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से मेरी ये प्रार्थना है, वो कृपा करें अपने निज धाम पर, हम पर, ब्रजवासियों पर, यहाँ आने वाले आगंतुक भक्त गणों पे, हम सब मिलके उनके निज धाम को द्वापर रूपी जैसा ये स्थान था वैसा बना सके। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हमने इस अभियान में मुख्य रूप से सहयोगी संस्था हार्टफुलनेस के कुछ पदाधिकारियों से बात की।
2: मेरा नाम अनुपम अग्रवाल है और मैं संस्था में उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। ये अभियान हमारे पूज्य दाजी अभी मथुरा आए थे, तो मथुरा में जब वो आए तो उन्हें यहाँ पे जो जिस प्रकार से यहाँ उन्होंने भ्रमण किया, कुछ जगहों पे वो गए तो उन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार से पॉल्यूशन था, गंदगी थी, कुंड में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ हुआ था, तो उसे देख करके उन्हें कष्ट हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की धरती है, ये पवित्र स्थान है और वहाँ पर इस प्रकार की फिल्दीनेस देख करके उन्हें काफ़ी कष्ट उनके हृदय को पहुँचा। तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि यहाँ हमें ब्रज क्षेत्र को स्वच्छ बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने जो हमारे मेम्बर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं मालिक के, हमारे गुरुदेव के, तो उनको सबको आह्वान किया हम यहाँ आकर के इसमें स्वच्छता का एक अभियान चलाएं। तो उसका नाम उन्होंने दिया ब्रज वैभव अभियान, जिसका अर्थ यह है कि उस वैभव को द्वारा लौटा के लाना है, जो भगवान कृष्ण के समय में यहाँ का वैभव था, उस वैभव को हमें दोबारा से वही बनाना है। उसमें हम लोगों ने ये सब लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस प्रकार से हम ब्रज क्षेत्र को स्वच्छ रख सकते हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, उसके बारे में प्रिंट कराए हैं। तो वो फैम्पलेट सब लोगों के साथ बांटेंगे, देंगे उन्हें। इसके अलावा जो हमारे स्वयंसेवक हैं वो 1-to-1 बेसिस पे सारी दुकानों पे सारे जन साधारण से बातचीत करेंगे, बातचीत करके उन्हें जागरूक करेंगे कि ये स्वच्छता अभियान केवल 1 जन 2 जन या 100 जन के करने से नहीं होगा, ये तो जन जन के करने से होगा। जब सब लोग जुड़ेंगे इससे तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा।
3: जी बिल्कुल श्रोताओं, क्योंकि ये जागरूकता और प्रेरणा का विषय है और इसके लिए हम सबको ही जागरूक होना होगा। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है सर, परिचय दें अपना।
4: सुरेंद्र कुमार शर्मा, मथुरा का हार्टफुलनेस कोऑर्डिनेटर हूँ मथुरा डिस्ट्रिक्ट का। मैं आपके माध्यम से सभी ब्रजवासियों से एक संकल्प दिलाना चाहूँगा कि हमारे जो ब्रज को स्वच्छ रखें, साफ रखें। जैसा कि अभी इसका नाम भी दिया गया ब्रज वैभव अभियान, तो जो पुराना अभियान था, जैसे जो चल रहा था श्री कृष्ण के समय था, स्वच्छता थी, हरियाली थी, यहाँ उसी तरह का वो संकल्प हमारे दादाजी ने लिया हुआ है, उसी को हम वापस लेने आ रहे हैं और उसी वैभव को पाना चाह रहे हैं। उस वैभव को पाने के लिए हम सभी से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि सभी अपने ऊर पास आस पास कहीं गंदगी न फैलाएं, उसके प्रति सचेत रहें। सभी अपने अड़ोस पड़ोस सभी जानकारों को सभी को सूचित करें, जागृत करें कि वो कहीं गंदगी नहीं फैलाएं, इसी से अपना ब्रज को स्वच्छ बनाएं।
3: और भी यहाँ संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, मैडम परिचय दें अपना।
5: हाँ, मैं अर्चना शर्मा ग्वालियर से सेंटर जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ, हार्टफुलनेस कोऑर्डिनेटर।
3: विशेष रूप से वृंदावन में सभी लोग एकत्रित हुए हैं, काफी सारे स्वयंसेवक आपकी संस्था से आए हुए हैं, तो इस अभियान को लेकर क्या कहेंगी?
5: जी, हमारे जो हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड है श्री कमलेश जी पटेल, उन्होंने ये जागरूकता फैलाने का जो प्रयास किया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्रज वैभव अभियान, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस ब्रज का जो वैभव है उसे पुनः हमें लौटाना है और यहाँ स्वच्छता और सुंदरता फैलाना है। और आप सभी के माध्यम से, आप सभी के सहयोग से हम इसको बिल्कुल निश्चित रूप से पुनः प्राप्त करेंगे। और आज हमारा जो ये प्रोग्राम है उसमें हम सभी जो हार्टफुलनेस के जो भाई बहन हैं वो हर घर जाकर सभी भाई बहनों से ये विशेष अनुरोध करेंगे कि किस तरीके से हमें स्वच्छता लाना है, कूड़ा नहीं फैलाना है और ये जितनी सुंदर जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है इसका वैभव उसी तरीके से हम लौटाएं जैसा हमें पहले प्राप्त हुआ था।
3: जैसा कि आज साफ सफाई में जो सबसे बड़ी जो बाधक होती है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, पॉली बैग है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी?
5: ये पॉलीथीन और इस प्लास्टिक बॉटल से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और चूंकि हम बात करते हैं कि इस तरीके से कोई भी चीज जो हमारे एनवायरमेंट को, यानी कि हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाए, उन सब चीजों का हम उपयोग न करेंगे। हम प्लास्टिक बॉटल्स की जगह स्टील बॉटल्स का यूज करेंगे। जहां पर हम पॉलीथीन्स का यूज कर रहे हैं तो उन पॉलीथीन्स की जगह पर हम कपड़ों के जूट बैग्स, कपड़ों के बैग्स का उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारे वातावरण को बचाया जा सके।
3: सभी ब्रजवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगी?
5: सभी ब्रजवासी जो है, हमारे सब भाई बहन है।

0: हार्टफुलनेस की तरफ से उन सभी से हम विनम्र अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जैसा कि आप सभी इस अभियान में हमारा सहयोग करें और जो कचरा है, सूखा कचरा, गीला कचरा, उसको सेपरेट रखें, प्लास्टिक का यूज ना करें। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम पॉलीथीन्स की जगह कपड़े के बैग का उपयोग करें, जूट का उपयोग करें और इस वातावरण को बचाएं और साथ ही इस जो हमारा ब्रज है इसके वैभव को पुनः लौटाएं। धन्यवाद।
1: इस व्यापक स्वच्छता अभियान में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप हैं मथुरा के EDM प्रशासन श्री अमरीश कुमार।
2: देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारी ब्रज धरा है ये जो है बहुत ही पवित्र है और देश विदेश से करोड़ों सैलानी यहाँ आते हैं और हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम अधिकारी हों, कर्मचारी हों, यहाँ के रहने वाले हों, सभी इसको स्वच्छ रखें क्योंकि सभी कहते हैं कि स्वच्छता में ही भगवान का वास्ता है। तो आज जो है एक ये अभियान चलाया गया है BTBP हार्टफुलनेस और इसमें NGO और प्रशासनिक अधिकारी हमारे जो सबके मुखिया श्री शैलजा कांत मिश्र जी के नेतृत्व में कमिश्नर साहब, ADG साहब, DM साहब सभी लोग जो है आज अभियान में हैं। पूरे परिक्रमा मार्ग को 11 सेक्टर में बांट करके 11 अधिकारी लगाए गए हैं जो एक एक किलोमीटर पर इसकी सुपरवाइज कर रहे हैं और इसमें इसको सबसे बड़ा जो इसका उद्देश्य है कि इसको जन सहभागिता के रूप में परिवर्तित करना है क्योंकि ये देखिए ये ऐसी चीज है कि एक व्यक्ति या 10-20 सफाई कर्मी के माध्यम से हम साफ नहीं रख सकते। जब तक हर व्यक्ति अपने कूड़े को मैनेज नहीं करेगा, अगर हम जो हमारा एक कहते हैं कि हम व्यवहार में नहीं ले आएंगे कूड़ा कहाँ डालना है, तो गीला कचरा हो गया, सूखा कचरा हो गया, उनको अलग अलग हम नहीं करके रखेंगे तब तक नहीं इसको हम स्वच्छ रख सकते हैं। तो सभी के माध्यम से हमारे उच्च अधिकारियों के जो दिशा निर्देश हैं और सभी के माध्यम से मैं पूरे सभी लोगों को, चाहे वो हमारे श्रद्धालु हो या मथुरावासी, सभी को यही अनुरोध करना चाहूंगा सभी से कि हम लोग मिल करके इस महाअभियान को सफल बनाएं। हमारा सफाई के साथ साथ जो ये सबसे बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है कि लोगों को अवेयर करना है, हर व्यक्ति अपने कूड़े को मैनेज करना सीख जाए और उसको अपने जीवन में आत्मसात कर ले। तो यही हम लोगों का सबका जो है सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चीज को जो है सफल बनाने के लिए जब तक जनसहभागिता नहीं होगी तब तक ये चीजें संभव नहीं है। तो सभी लोग जो है इसको मिल करके ब्रज धरा को स्वच्छ बनाए और आने वालों को जो हमारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेके जाए।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ अब हम कार्यक्रम में आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें क्योंकि पॉलीथीन के बहुत नुकसान हैं। पॉलीथीन अगर थोड़ी सी हमारी सुविधा बढ़ाती है लेकिन दूसरी ओर ये हमारी प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। बाज़ार से सामान लाने के लिए हम अक्सर पॉलीथीन की थैली लेते हैं और उपयोग के बाद उसे कहीं भी फेंक देते हैं और ये छोटी सी लापरवाही हमारे पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाती है। और कई बार तो जो हमारे पशु हैं जैसे गाय है, कुत्ता है, तो ये इसमें भोजन समझकर इसको खा लेते हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और कई बार उनकी जान भी चली जाती है। पॉलीथीन जलाने से निकलने वाला धुआँ भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है जिससे सांस संबंधी अनेक बीमारियाँ होती हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान हमारे हाथों में है। हम बाज़ार जाते समय कपड़े का या जूट का थैला साथ लेकर जाएं और जहां तक संभव हो कागज़ या पर्यावरण के अनुकूल सामग्री जैसे जूट आदि से बने थैले का ही उपयोग करें और ये आदत बनाएं कि जब भी हम बाज़ार से सामान खरीदने जाएं तो दुकानदार से पॉलीथीन नहीं मांगें बल्कि अपने साथ एक थैला लेकर जाएं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम पॉलीथीन से होने वाले नुकसान को कम कर पाएंगे और अपने पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। इसलिए संकल्प लें कि ना करेंगे पॉलीथीन का उपयोग, स्वच्छ और हरित भारत का हम करेंगे निर्माण। और इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कुछ आज की खास खबरों की। तो आज की खास खबरों में हैं, धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षक शहर का अनुभव कराने के उद्देश्य से नगर निगम के प्रमुख मार्गों को प्रकाश व्यवस्था से अपग्रेड करने का कार्य शुरू कर दिया गया।

परसों पुरानी स्ट्रीट लाइटों को हटाकर उनकी जगह आधुनिक एलईडी और आकर्षक डिजाइन वाली स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। मुड़िया पूर्णिमा मेले की बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मथुरा जंक्शन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और एसपी रेलवे ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 6 अनुभाग से पुलिसकर्मी व्यवस्था के लिए बुलाए जाएंगे। और साथियों, बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की, तो आज की तिथि 20 जुलाई इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1847 में जर्मनी के खगोलशास्त्री थियोडर ने धूमकेतु बोरसेन मेटकॉफ की खोज की थी और आज ही के दिन सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन मानव के रूप में चंद्रमा की सतह पर पहली बार उन्होंने कदम रखा था और आज ही के दिन सन 1997 में तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था और आज ही के दिन सन 1905 में भारत के इतिहास में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को मंजूरी दी थी। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम को यही देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: आप अभी सुन रहे थे सफर फिल्म में मुकेश की आवाज़ में इस गीत को, और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।
1: दिल में दर्द रहता है,
2: अच्छा
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती,
2: बाप रे
1: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

जात फिर संसार प्राणी बन में बस जाना यदि।

लक्ष्मण शाहबादी के लिखे गीत को आपने सुना भी, चित्रगुप्त ने संगीतबद्ध किया था। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म धरती मैया का ये गीत था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन।
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।

आपने सुना अभी फिल्म जुदाई का ये गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार की। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

साथियों, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म दो चोर के इस गीत को। लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और एसडी वर्मन का संगीत है। आवाज है लता मंगेशकर।

साथियों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दो चोर के इस गीत को। आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: आपने सुना अभी
1: शिल्पा रॉय और मिथुन की आवाज़ में फिल्म द ट्रेन का ये गीत।
0: और साथियों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दो रास्ते फिल्म के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आपने अभी सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में साजन की सहेली फिल्म के इस गीत को। गीत को लिखा था शायर जनाब मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था उषा खन्ना ने। आज का ये कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135, मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी।
3: हेलो आकाशवाणी, नमस्ते सर।
2: नमस्ते,
3: मैं गांव सोनवा से हरीश कुमार बोल रहा हूँ सर।
2: हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, कैसे हैं?
3: ठीक है सर।
2: और क्या चल रहा है गांव में, खेती बाड़ी में क्या कर रहे हैं आजकल गांववासी?
3: बाजरा बो रहा है सर।
2: अच्छा, बारिश तो कम हो रही है?
3: हाँ, बारिश तो कम हो रही है पर वो दिया है।
2: अच्छा बताइए, आज क्या सुनेंगे, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
3: दूध का कर्ज का गाना है
2: जी,
3: तो मैं दिल से कैसे काम करेंगे।
2: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते।

0: स्वागत चतुर्वेदी जी आपका।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत दिनों में बात हो रही है हमारी आपकी।
1: हमारी सिस्टर बहुत बीमार हो गई थी और बाद में वो एक्सपायर भी हो गई, तो वहीं पर जो बिजी थे, क्या करें।
0: ओहो
1: और बाकी सब ठीक है। आज बहुत दिन बाद मिला है फोन।
0: जी, क्या
1: ये
0: सुनेंगे
1: समाज
0: बताएं।
1: बहन को गुजरे तो अभी 1 महीना करीब हो गया, तो
0: जी
1: मैं आपसे एक गाना उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप सुनना चाहता हूँ। बोल है, जो चला गया उसे भूल गया, फिल्म का नाम साथी है ये, इसको कृपया सुनवा दीजिएगा। बहुत
0: सुनवाते हैं चतुर्वेदी जी आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, श्री हरदास,
0: श्री हरदास। आपका भी धन्यवाद।
1: जय हो।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ जी, मैं उस पार से बोल रहा हूँ, ज्ञान सिंह।
0: ज्ञान सिंह जी उस पार से,
1: हाँ जी, ठीक
0: क्या हाल चाल है ज्ञान सिंह जी?
1: है सर।
0: और खेती में
1: आप
0: क्या कर रहे हैं?
1: खेती वेती नहीं है सर हमारे पास। मैं काफी दिन से बीमार हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, खेती नहीं है हमारे पास।
0: बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको आज के कार्यक्रम में।
1: आज के कार्यक्रम में खिलौना फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ। खिलौना मेरा दिल टूट जाते हो।
0: लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और एक मेरा मित्र है यादराम, उनके लिए संपर्क करता हूँ ये गाना।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: आवाज के जादूगर आदरणीय उद्घोषक महोदय, नमस्कार
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: जी। मैं आपका नियमित श्रोता, ब्रजी रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा, सिहोरा मथुरा से।
0: कैसे हैं चौधरी साहब?
1: महोदय, हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
0: थैंक यू, धन्यवाद। और गांव में क्या चल रहा है?
1: गांव में सभी लोग कुशल मंगल है सर। इस समय खेती में धान की रुपाई हो रही है।
0: अच्छा,
1: जी,
0: बारिश तो कम हो रही है।
1: कम है लेकिन अपने पास साधन है सर, ट्यूबवेल वगैरह की।
0: जी, बताइए आज चौधरी साहब की क्या फरमाइश है?
1: महोदय, गाना है फिल्म राज महल से,
0: जी
1: लता जी और रफी साहब का गाया हुआ है, जिसके बोल हैं, मेरे प्यार की आवाज से चली आना चली आना।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर, यहाँ मैं अपने कुछ श्रोता साथियों के नाम लेना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: बिल्कुल।
1: बारासिया छिंदवाड़ा से हैं आदरणीय टेक चंद्र अग्रवाल साहब, और ऊपरकोट चौखूंटी बुलंदशहर से हैं शहीद अब्बासी साहब।
0: सुनवाते हैं आप मित्रों की फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारी कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर। राधे राधे
0: राधे राधे।
1: सर। हम नगला चंद्रवान दीनदयाल नाम परे मथुरा से बोल रहे हैं सर।
0: क्या शुभ नाम है आपका?
1: शुभ नाम है लव कुमार।
0: अच्छा, लव कुमार जी कैसे हैं?
1: अच्छे हैं सर। और आप बताइए आप कैसे हो।
0: एकदम बढ़िया हैं। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है आपकी?
1: जी सर।
0: और परिवार में कैसे हैं सब?
1: सब मौज ले रहे हैं सर। सभी अच्छे हैं।
0: अच्छा बताइए, क्या फरमाइश है आज?
1: फरमाइश रहेगी सर। सरफरोश मूवी का गाना है उसने वालों को कवर किया जिंदगी क्या चीज है।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। राधे राधे।
0: राधे राधे।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम लेकर आए आपके बीच देवराज कृष्ण दीक्षित।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों के झरोखे से। आज बात करते हैं पार्श्व गायक मन्ना दा को लेकर, मन्ना डे को लेकर। आइए सुने उनकी आवाज में ये गीत जिसे लिया फिल्म केतकी गुलाब जूही। ये गीत इस फिल्म को लिया, फिल्म बसंत बहार से। और आपके साथ इस गीत में स्वर दे रहे हैं भीमसेन जोशी।

आज कार्यक्रम यादों के झरोके से में आज हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आप तक मन्ना डे को लेकर। जी हाँ, उनका वास्तविक नाम प्रबोध चंद्र डे था और बचपन से ही हिंदी को लेकर, संगीत को लेकर उनके मन में एक विशेष एक उसको लेकर एक दिलचस्पी थी। और इस यही शायद कारण था कि जो उनके घर में संगीत परंपरा थी उसको उन्होंने धीरे धीरे वहीं से सीखना आरंभ किया। 1 मई 1919 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो भी उनके गीत हैं उसमें चाहे वो शास्त्रीय संगीत से या उपशास्त्रीय संगीत से प्रेरित गीत हैं या ऐसे गीत जिनमें अलग अलग आपको रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग किस्म के गीत हैं, और लेकिन वो जो भी उन्होंने अपने उस गीत को कहा वो सभी गीत आज लोकप्रिय हैं और सभी के द्वारा वो पसंद करे जाते हैं। आइए सुने इसी उन्हीं की आवाज़ में दिल ही तो है। इस फिल्म से ये गीत गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीत रोशन का, आवाज़ मन्ना डे की।

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे को फिल्म दिल ही तो है। जी हाँ, गीत साहिल उद्यानवी का, संगीत रोशन का था। और कार्यक्रम में बात करेंगे आज एक बार फिर से आपसे यादों के झरोखे में मन्ना डे को लेकर। फिल्म पड़ोसन का गीत हो या फिल्म वक्त का वो गीत जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी वक्त से कल और आज, बात सिर्फ इतनी कि हर गीत को उन्होंने आत्मा प्रदान करी और जीवंत हो गया वो गीत जहाँ पर मन्ना डे ने स्वर दिए और लोकप्रिय संगीत रहा उनका, और आज भी लोग उनके गीतों को याद करते हैं। फिल्मी सफ़र, उन्होंने 1942 में फिल्म तमन्ना से अपने पार्श्व गायन कैरियर की शुरुआत की थी, और उनके कुछ सबसे लोकप्रिय गीतों में तू प्यार का सागर है, जिंदगी कैसी है पहेली। जी हाँ, ये गीत मेरे जहन में आ रहे हैं उनके, जब हम उनको या उनकी याद करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो वो ऐसे शख्स जिनको भारत सरकार ने 1971 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण और वर्ष 2007 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। और आइए सुनते हैं मन्ना डे के ही स्वर में कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोखे से। आज यादों के झरोखे किस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मन्ना डे को लेकर, उनकी गीतों को लेकर। अभी प्रारंभिक जीवन और संगीत शिक्षा, जी हाँ, उनके चाचा कृष्ण चंद्र डे यानी कि केसी डे एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। मन्ना डे को उनसे संगीत की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से की। वहीं उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई करी। उन्होंने उस्ताद अमन अली खां से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और भिंडी बाजार घराने से वो जुड़े रहे। ये रही बात संगीत की, उनकी शिक्षा को लेकर, और जो भी लोग उस दौर के रहे, और जब जब उन्होंने मन्ना डे से उनसे मुलाकात हुई उनकी, या उनके जो अनुभव रहे, संस्मरण रहे, सभी का ये कहना था कि वो बेहद सरल व्यक्तित्व के धनी थे और संगीत उनके व्यक्तित्व में बसता था। ऐसा व्यक्तित्व था उनका। और आज एक और गीत सुनते हैं। इस गीत को लिया फिल्म परवरिश से। आवाज़ इस गीत में मन्ना डे और लता मंगेशकर की, गीत हजरत जयपुरी का, संगीत दत्ता राम का।

1943 में फिल्म तमन्ना के बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें सुरैया के साथ गाने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले वो फिल्म राम राज की में कोरस में भी वो गा चुके थे, और यही एक फिल्म थी जो गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देखी थी। मनाडे केवल शब्दों को ही नहीं गाते थे, बल्कि अपने गायन से शब्दों के पीछे के जो भाव हैं उनको बड़ी खूबसूरती से रखते थे, लाते थे। और प्रसिद्ध हिंदी कवि हरवंश राय बच्चन ने अपनी अमर कृति मधुशाला को स्वर देने के लिए मन्ना डे का चयन किया, उनसे कहा गाने के लिए। तो ऐसी विशेष प्रतिभा के धनी थे मन्ना दा जी, जिन्हें हम प्रबोध चंद डे के रूप में भी जानते हैं। और आई सोने उन्हीं के स्वर में फिल्म सीमा से ये गीत, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों के झरोखे से। आज बातचीत करी हमने पार्श्व गायक मन्ना डे को लेकर, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

और लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम में जुड़े हैं श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से। आप भी जुड़ सकते हैं, भेज सकते हैं अपना व्हाट्सएप संदेश। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94-122-25-575। लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश कार्यक्रम गीत बात और SMS में।

व्हाट्सएप संदेश के साथ जुड़े हैं श्रोता साथी कार्यक्रम में ऊपरकोट मोहल्ला चौकंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अब्बासी परवार बुलंदशहर से। और अगले संदेश के साथ में हैं आप श्रोता साथी साहेब जी। हाँ, इन्होंने संदेश भेजा कार्यक्रम में रश्मि झरना और भरत कुमार राजकोट गुजरात से, इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी कार्यक्रम में। अगले संदेश के साथ स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू पप्पी भाटिया भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में और आप भी जुड़े कार्यक्रम में। जलाला दस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल पिया दिशानी और निमित आहूजा। अगला संदेश सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गर्जारन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक शेरी बढ़ने रकोला से हैं, अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू हसमुखलाल, बुलबुल, संजीव बंटी, ये सब परिवारी जन जुड़े इनके। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र, चिंपा, कपिल और पूजा परिहार संदेश के साथ में। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत का संदेश है और मैसेज के साथ में है कार्यक्रम में। मुदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह, एक और मैसेज के साथ में है। जोधपुर राजस्थान से सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्वी। अगले संदेश के साथ में गांव पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित बयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सवर्ण देशमुख, सानवी देशमुख का मैसेज है। और आप जुड़े गणी डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, अयाज अंसारी, खतीजा बेगम, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ लुफर जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में।

आइए सुनते हैं श्रोता साथियों की पसंद पर ये नगमा, जिसे लिया हमने फिल्म आप आए बाहर आई। जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

और लेते हैं कार्यक्रम में कुछ और संदेश। जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बात और SMS। जुड़ चुके हैं श्रोता व्हाट्सएप संदेश।

के माध्यम से हम तक आई हैं। ये फरमाइश मोताला महाराज थे विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी ओम कुमार। अगले श्रोता मैसेज के साथ में आप हैं बाबू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया, बेबी हलीमा, बेबी जिक्रा डावर और बेबी आयशा खत्री। घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से हैं मूसा जी खत्री, ईशा और जाकिर खत्री। एक और मैसेज के साथ में कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दुबेहा नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय का भी मैसेज मिला। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा भी जुड़े कार्यक्रम में और आप भी जुड़े। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी और इनके परिवारजन। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश गौतम, गीतिका खोरवाल। आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में तेलंगाना स्टेट से करीमनगर से लक्ष्मी नारायण, विजया अभिनव, साई किरण और एक संदेश के साथ में सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ का मैसेज मिला। उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, अर्णव सत्यमानंद, पाकुड़ झारखंड के ये श्रोता साथी और मैसेज के साथ में है आप श्रोता साथी हैं। मैसेज में आपने ये संदेश भेजा हमको, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से श्रोता साथी जाकिर मंसूरी, कमरुल निशा, शुभिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अब्दुल हक गफ्फार डावर, खुश नसीब, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल हक डावर, जयाउल हक डावर, विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू रानू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू चौधरी, महेश सिंह नगला राणा सेवरा से, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, राजू लवानिया खंदौली आगरा से, यादराम उस्फार से ये सभी श्रुदी श्रोता साथी। एडवोकेट खड़क सिंह छोकर का भी संदेश मिला। आप भी जुड़े कार्यक्रम में लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झाड़ावाड़ राजस्थान से हर्षता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी और पप्पूलाल बागरी। मैसेज के साथ में राही नगर गंज डोवारा से शमसुल खान, अदनान फैजान, ताबिश आबाद और अनु खान। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, मजरू का टीला से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। एक और संदेश के साथ में आप हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान। मारहरा दरवाजा ईटा से नवी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन और सुहेल हसन, अनम अब्बासी, अशरफ अब्बासी, रसीद। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ से राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भारू प्रताप सिंह पवार का ये परिवार जुड़ चुका है और आप भी जुड़े। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी ऐशिका और तन्मय गजभिये। मामुल वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंत राव भोजने, पी एस नवानकर और तुषार रांगली का मैसेज मिला। धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, करमजीत कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, जसबीर सिंह अरोड़ा, गांव डागर निम्नाबाद जिला जींद के श्रोता साथी हैं। गढ़ा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजाल अनु और उस्मान कलीम अंसारी। मुजफ्फरनगर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार भी जुड़ चुके हैं और मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोद पुरी, दीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील बीके पुरी, कैलाश नीलम, रमा और सुनील पाठक का संदेश मिला। आइए सुने इनकी पसंद पर फिल्म मोहरा से ये गीत, आवाज उदित नारायण, अलका याग्निक की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत विजू शाह का।

अभी आपने सुना फिल्म मोहरा से ये गीत, अलका याग्निक उदित नारायण के स्वर में, गीत बात और एसएमएस में जुड़े हैं श्रोता व्हाट्सएप संदेश के साथ में, आप जुड़े कार्यक्रम में। नवाब खान, इशरत जहां, अजहर खान और मुस्तकीम खान, आजिम खान, ये सभी वर्ली मुंबई से संदेश भेजते हैं और आप जुड़े कार्यक्रम में। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, संदेश के साथ में श्रोता साथी। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। गांव पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का भी मैसेज मिला, आप भी जुड़े कार्यक्रम में। तिलीपारा बिलासपुर से छत्तीसगढ़ से गुड़वर श्रीवास, करुणा, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। संदेश के साथ में सुधीर श्रोता है, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। मंगल गेट मलकापुर से रामेश्वर तलेलकर, वंदना तलेकर, भारती ठाकुर और दिवहर्ष तलेकर। श्रोता साथी मोहली पंजाब से जुड़े हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। साधु शहर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ का मैसेज। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु विधान खुराना, तुलसी मस्कीन। नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीम भाई, नईमुद्दीन मतीन, सैयद खलील, मुबीन शेख चंद, फारूक फूलवाले। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल और रचिता, केशु रिधाना का संदेश। राज माता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, मनीष वर्मा, रेहान और अंकिता जोशी, पायल जोशी। मारा से नवी हसन, सहनाज, नवेद, सुहेल, अनम, यशफ और रसीद वारसी। योगेश कुशवाहा, ऋषु देवू, गणेश, उपेंद्र कुमार, कीर्ति, कुमकुम और इनका परिवार। गांव लोहड़ी जिला महुआ बुंदेलखंड से जयपाल यादव, नंदपाल यादव, राघवेंद्र, रागनी, रिया, दिव्यांशी, आराधना और रोनिका। अगले संदेश के साथ में है मैसेज के साथ छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। अगला संदेश गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर का कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से।

गणेश पुर ग्रेजुएट वैराइटा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा सरफराज, गुल फराज और बेबी मुस्कान, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित देवी गर्दी, चंडीगढ़ से सतीश अलेजा, बिंदा अलेजा, ये संदेश साथियों का, ढांडी ने अधूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल बाठे।

श्रोता साथियों की पसंद पर आइए सुने फिल्म हेट स्टोरी 2 से ये गीत। आवाज़ इस गीत में शमीरा कोपिकर अरिजीत सिंह की, गीत संगीत आरको का।

हेट स्टोरी 2। जी हाँ, इस फिल्म से अभी आपने सुना अरिजीत सिंह, समीरा, कूपी कर को, गीत संगीत आरगो का था। और इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस यहीं संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त अनुराग पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं डोरीलाल। आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत।

मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अभी आपने सुना डोरीलाल दीक्षित और साथियों के स्वर में ये ब्रजलोकगीत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आप सुन रहे हैं ब्रजलोकगीत। लेते हैं एक व्यावसायिक अंतराल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और आइए सुने डोईलाल दीक्षित और साथियों पर से ये गीत।

0: सुनाइए ब्रज लोकगीत। आज कार्यक्रम में कलाकार हैं डोरीलाल दीक्षित और साथी, सुनते हैं इनसे अगला ब्रज लोकगीत इस संदेश के बाद।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो।
3: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
8: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

अभी आपने सुना ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज के कलाकार थे डोरीलाल दीक्षित और साथी। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की

0: कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में मैंने सुना कि अपना कार्यक्रम वनिता लोक कार्यक्रम लेके आ रही हैं आपके बीच प्रियंका खंडेलवाल, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण में जन चेतना। साथ

इस समाज पर नशे का दुष्प्रभाव, इस विषय पर रहेगी आज की चर्चा। साथ ही आरोग्य क्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अंशु शर्मा से बातचीत, छोटे बच्चों में बढ़ता मोटापा कारण और निवारण, इस विषय पर ये वार्ता सुनेंगे आप। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से लेंगे आप 1:45 पर। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर, जिसमें आज नई सोच के साथ संस्कारों से बंधे रहें और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस विश्व शतरंज, जी हां विश्व शतरंज दिवस पर रहेगी आज की बात। और आज आप सुनेंगे काव्यांकुर क्रम में आज के कवि होंगे पुलकित आचार्य, आप सुनेंगे इनसे काव्य पाठ। लेंगे आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का भी। हमारे किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण संध्या 6:15 पर। चर्चा रहेगी इसमें आज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और पशु पोषण में खनिज लवण, इस विषय पर ये चर्चा। साथ ही सुनेंगे आप भेंट वार्ता, आज का विषय रहेगा पशुओं में अफरा रोग बचाव और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से बातचीत करेंगी मृणालिनी दीक्षित। लेंगे आनंद कार्यक्रम में आप ब्रज लोकगीतों का। भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन सुना जा सकेगा संध्या 6:45 पर और 7:05 का समय रहेगा ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का, जिसमें आज आप सुनेंगे मोहनलाल प्रेमी से ब्रज वार्ता, ब्रज वसुंधरा के गौरव महाकवि नवनीत। शाम सुहानी, जी हां संध्या 7:31 पर श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे, करेंगे व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9412225575, सुनेंगे अपनी फरमाइश संध्या 7:31 पर शाम सुहानी क्रम में। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा, इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:15 पर एक बार फिर से फिल्म संगीत का आनंद लेंगे श्रोता सुहाने तराने कार्यक्रम में। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: अभी आप सुन रहे थे संवित स्वर में देशगान।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: मैंने सुना कि अपना कार्यक्रम वनिता लोक कार्यक्रम लेके आ रही हैं आपके बीच प्रियंका खंडेलवाल।

धरती माँ की यही पुकार, धरती माँ की यही पुकार, हरियाली से सजे संसार। नारी यदि ले संरक्षण करने की ठान, नारी यदि ले संरक्षण करने की ठान, सुरक्षित होगा कल और वर्तमान। इन्हीं पंक्तियों के साथ वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को प्रियंका खंडेलवाल का प्यार भरा नमस्कार। कहा जाता है कि यदि एक महिला जागरूक होती है तो पूरा परिवार जागरूक होता है। यही बात पर्यावरण संरक्षण पर भी लागू होती है। महिला केवल परिवार की देखभाल नहीं करती बल्कि आने वाली पीढ़ी के संस्कारों की प्रथम शिक्षिका भी होती है। इसीलिए पर्यावरण की रक्षा की शुरुआत घर से और घर की शुरुआत महिला से होती है। आज हमारा पर्यावरण अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, जल की कमी, वृक्षों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे समय में यदि महिलाएं छोटे छोटे आदतों से बदलाव लाएं तो बड़े परिवर्तन संभव हैं। बहनों, यदि हम कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें, पानी और बिजली की बचत करें, रसोई के जैविक कचरे से खाद बनाएं और बच्चों को पेड़ पौधों से प्रेम करना सिखाएं, तो ये छोटे छोटे कदम पर्यावरण संरक्षण की मजबूत नींव बन सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जल, जंगल और जमीन जैसे सीधे जुड़ी रहती हैं। वे प्राकृतिक संसाधनों का महत्व भली भांति जानती हैं, समझती हैं और इन्हें संरक्षित करने हेतु अपनी अहम भूमिका भी अदा करती हैं। हमारे देश का चिपको आंदोलन इसका प्रेरणादायक उदाहरण भी है। उत्तराखंड की गौरा देवी और उनकी साथियों ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगाकर यह संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकार का नहीं बल्कि हम सभी का दायित्व है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ का स्वरूप माना गया है। पृथ्वी, नदियों, वृक्षों और पर्वतों के प्रति सम्मान का भाव हमारी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। यदि महिलाएं इन मूल्यों को अपने परिवार और अपने बच्चों में विकसित करें तो पर्यावरण संरक्षण एक जन आंदोलन बन सकता है। बहनों, आज हम सभी यह संकल्प लें कि अपने घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाकर उसकी देखभाल करेंगे, जिस प्रकार हम अपने बच्चे की करते हैं। जल और ऊर्जा का संरक्षण करेंगे और दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। याद रखिए, प्रकृति रहेगी सुरक्षित तभी जीवन रहेगा समृद्ध। नारी का जागरूक कदम ही हरित भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। तो बहनों, अपनी इस चर्चा को अब देती हूँ मैं यहीं विराम और रुख करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं एक गीत।

अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली चर्चा की ओर। बहनों, नशा किसी भी प्रकार का हो, शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या अन्य मादक पदार्थ, यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए हानिकारक है। शुरुआत भले ही शौक से हो, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है। नशे का दुष्परिणाम हम सभी जानते हैं कि इसका सबसे अधिक असर परिवार पर पड़ता है। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, आपसी रिश्तों में तनाव बढ़ता है और बच्चों के भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार घरेलू हिंसा और पारिवारिक कलह का कारण भी नशा बन जाता है। एक महिला परिवार की धुरी होती है, इसीलिए महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को नशे से दूर रहने की सीख दें और परिवार में स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। यदि परिवार का कोई सदस्य नशे की लत से जूझ रहा है, तो उसे समय पर उचित सलाह और उपचार देकर उसे प्रेरित करें। जब हम सभी मिलकर संकल्प लेंगे कि स्वयं नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार को नशा मुक्त बनाएंगे और समाज में भी इस संदेश को फैलाएंगे, तो निश्चित ही समाज और परिवार दोनों ही इस दुष्परिणाम से बच पाएंगे। बहनों, अपनी इस चर्चा को इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। नशे की राह अंधेरों की, नशे की राह अंधेरों की, जीवन को वीरान ना कर, स्वस्थ तन मन उज्जवल भविष्य, इसका कभी अपमान ना कर।

0: पर नशा छोड़ो, सेहत जोड़ो, यही जीवन का सार। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, यही हमारा सच्चा उपहार। और अब बात करते हैं छोटे बच्चों में बढ़ते मोटापे की। बहनों, आज के समय में छोटे बच्चों में बढ़ता मोटापा गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्यों बच्चों में बढ़ता मोटापा चिंता का विषय बन रहा है हम सभी के लिए, किस प्रकार हम इस चिंता से बाहर निकल सकते हैं, इन्हीं बातों को जानते हैं आरोग्य वार्ताक्रम के अंतर्गत छोटे बच्चों में बढ़ता मोटापा कारण और निवारण। वार्ता को सुनकर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अंशु शर्मा। तो सुनते हैं हम और आप मिलकर यह वार्ता।
1: किसी बीमारी को महामारी तब कहा जाता है जब उस बीमारी के नए नए केसेस उम्मीद के हिसाब से एकदम ज्यादा दिखने लग जाते हैं। अगर पिछले 20 सालों से कंपेयर किया जाए तो बच्चों में मोटापा नामक बीमारी एक महामारी के रूप में सारे संसार में फैल चुकी है। बच्चों में मोटापा बड़ा गंभीर मामला है जिसका सीधा संबंध बच्चों के स्वास्थ्य से है। जब ये मोटे बच्चे बड़े होकर मोटे वयस्क बन जाते हैं तब इनमें मोटापा संबंधित बीमारियां अपने गंभीर रूप में दिखती हैं। अब प्रश्न यह है कि एक बच्चे को मोटा कब कहेंगे। इसे पता लगाने के लिए एक इंडेक्स बनाई गई है, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें बच्चों की एज तथा सेक्स के हिसाब से वेट और हाइट लेकर चलते हैं। इसके हिसाब से ए चाइल्ड इज डिफाइंड एज ओबेस इफ देयर बॉडी मास इंडेक्स फॉर एज परसेंटाइल इज 95% और ग्रेटर देन 95%। आइए सबसे पहले जानें कि एक बच्चा मोटा क्यों होता जाता है। जब आपका बच्चा अपने शरीर की आवश्यकता से ज्यादा खाता है तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी बच्चे की फैट सेल्स में जमा होती रहती हैं, जिससे कि समय आने पर इन एक्स्ट्रा कैलोरीज को यूज किया जा सके। अगर बच्चे के शरीर की फैट सेल्स में ये एक्स्ट्रा कैलोरी या एक्स्ट्रा एनर्जी रोज रोज जमा होती रहे और इस एक्स्ट्रा कैलोरी की बच्चे के शरीर को जरूरत ही नहीं पड़े तो क्या होगा, और ऐसा रोज रोज महीनों सालों तक चलता रहे तो बच्चे के शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे बच्चे के शरीर में रोज रोज आ रही इस एक्स्ट्रा कैलोरी को इकट्ठा करने के लिए और ज्यादा फैट सेल्स बनेंगी और बच्चे को मोटापा होने लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा खाने में जब कैलोरीज ज्यादा ले रहा है और इसे खर्च कम कर रहा है तब ही से उसमें मोटापे की जड़ बनने लग जाती है। वैसे बच्चों में मोटापा पैदा करने में एक अकेला कारण काम नहीं करता है, इसमें कई सारी बातें मिलकर काम करती हैं, जैसे बच्चे की आदतें, उसकी लाइफस्टाइल, उसके आसपास का वातावरण। कभी कभी मोटापा आनुवंशिक भी हो सकता है और कभी कभी कुछ बीमारियां भी बच्चों में मोटापा कर देती हैं। आइए बच्चों में मोटापा के कारणों में सबसे पहले लेकर चलते हैं सामाजिक कारण। हमारे आसपास के वातावरण का हमारे खाने पीने की आदतें बनाने में बहुत योगदान होता है। आजकल स्कूल, घर तथा कॉलोनी के आसपास बाजार, मॉल तथा छोटी बड़ी दुकानें बड़ी मात्रा में खुल गए हैं। इनके नाम भी हैं सुपरमार्केट, बड़ा बाजार, छोटा बाजार, फास्ट फूड कॉर्नर आदि, जिनमें तरह तरह के फास्ट फूड और पेय पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि मिल जाते हैं। मतलब ये है कि अब ये सब चीजें बच्चों को बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब तो इन बाजारों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सिनेमा हॉल भी होते हैं, यानी कि मूवी देखो, शॉपिंग करो और ये फास्ट फूड अपने बच्चों को खिलाकर अपना प्यार दिखाओ। यह आजकल के वातावरण का सजीव चित्रण है जो कि बहुत दुखद है। इसके अलावा हमारे घर का वातावरण भी कुछ इस तरह का हो गया है कि बच्चे घर में ही टीवी देखते रहते हैं और इस तरह के ज्यादा फैट वाले ड्रिंक्स और फास्ट फूड उनके हाथ में होते हैं। 20% बच्चों के मोटापे का कारण इस तरह के पेय पदार्थ हैं। बच्चों में मोटापे का दूसरा मुख्य कारण है उनकी फिजिकल इनएक्टिविटी या शारीरिक निष्क्रियता। आजकल के बच्चे फिजिकली इनएक्टिव हैं। इसका एक कारण यह भी है कि बच्चों को स्कूल से इतना ज्यादा होमवर्क मिला होता है कि उनके पास खेलने कूदने के लिए ज्यादा टाइम ही नहीं होता। इसके अलावा बच्चों के जीवन में खेलकूद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, यह शिक्षा बच्चों को ना तो स्कूलों में अच्छे से मिलती है और ना ही घर में माँ बाप से। स्कूलों में एक हफ्ते में कम 3 घंटे का समय खेलकूद या फिजिकल एजुकेशन का होना चाहिए जो कि नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आजकल बच्चे घर पर ही टीवी, लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट पर लगे रहते हैं। ये इन पर गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय घर से बाहर निकलकर भागा

इसके अतिरिक्त आजकल बच्चे घर पर ही टीवी, लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट पर लगे रहते हैं। ये इन पर गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय घर से बाहर निकलकर भागा दौड़ी का खेल खेलने का। बच्चों में मोटापे का तीसरा मुख्य कारण है मास मीडिया। इसमें हम टेलीविजन में और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या सड़कों में चारों तरफ लगे बड़े बड़े विज्ञापन ले सकते हैं, जो किसी फास्ट फूड कॉर्नर के हैं या पिज्जा शॉप के, या फिर चिप्स, कैंडी या किसी कोल्ड ड्रिंक के। इन विज्ञापनों या एडवर्टाइजमेंट के मेन टारगेट्स बच्चे होते हैं। टीवी में ऐसे विज्ञापनों की भरमार है, फिर बच्चे ऐसे विज्ञापन देख देख कर इनकी डिमांड करते हैं। आजकल के युग में माता पिता दोनों अक्सर नौकरी पेशा होते हैं, यानी पैसे की कोई कमी नहीं होती है। ये पेरेंट्स बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते और अपने बच्चों को अपना प्यार दिखाने के लिए उनकी खाने पीने की उल्टी सीधी डिमांड पूरी करते रहते हैं। मोटापे के चौथे नंबर के कारण पर आता है परिवार का खान पान। पिछले सालों में फैमिलीज का डाइट्री पैटर्न बदल गया है। सामान्यतः हम लोग रोजाना ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते हैं। आजकल घरों में अक्सर तला हुआ खाना और मीट आदि भी ज्यादा हो गया है। जब घर में बड़े लोग मीट, फास्ट फूड या ड्रिंक्स आदि ज्यादा ले रहे हैं, तो बच्चों में भी इसी तरह की खाने की आदतें बन जाती हैं। बच्चों में मोटापे के कारणों में पांचवें नंबर पर आ सकता है आनुवंशिक। साइंस बताता है कि बच्चों में मोटापा एक आनुवंशिक बीमारी भी है। अगर पेरेंट्स में मोटापा है तो 5 से 25% ज्यादा संभावना है कि उनके बच्चों में भी मोटापा आए। अब देखें कि अगर बच्चों में मोटापा है तो बच्चों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर बच्चा मोटा है तो वयस्क होने पर भी उसके मोटे बने रहने की 70% चांसेस ज्यादा हैं, और इसके साथ ही उसमें कई सारी बीमारियों के होने के भी ज्यादा चांसेस हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल आदि। ऐसे वयस्कों को टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर होने की संभावना भी ज्यादा होती है। ऐसे वयस्कों को हड्डियों से संबंधित बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, मतलब इन लोगों की लाइफ की क्वालिटी कम हो जाती है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को डिप्रेशन भी ज्यादा रहता है कि वो मोटे हैं। वो ये मानते हैं कि वो मोटे रहेंगे। ऐसे बच्चे स्कूल में होने वाले स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज से भी बचते हैं। आइए अब देखते हैं कि बच्चों में मोटापा कम कैसे हो, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले लेकर चलते हैं बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना। बच्चों में मोटापा ना हो, इसके लिए बच्चे और उसके माता पिता दोनों विलिंग होने चाहिए। दोनों ही के मन में अंदर से ये भावना होनी चाहिए कि बच्चों में और उनमें आदतें ऐसी बने जिससे कि मोटापा ना आए, मतलब कि पेरेंट्स अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। बच्चे टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। माता पिता होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपना लाइफस्टाइल बदलें। आप भी बच्चों के साथ 40 से 60 मिनट एक्सरसाइज करें। इसके अलावा बच्चा साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग या एरोबिक्स या कोई गेम, फुटबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल खेलकर भी अपने को फिट रख सकता है। इससे बच्चों की फैट सेल्स में जमा कैलोरीज धीरे धीरे बर्न होना शुरू होंगी और बच्चों का मोटापा कम होने लगेगा। बच्चों में मोटापे का निवारण करने के लिए नंबर 2 पर आता है बच्चों का खान पान या बच्चों का डाइट्री पैटर्न। इसमें सबसे पहली चीज है कि माता पिता खुद ही हेल्दी खाना खाएं और बच्चों के सामने खुद को एग्जाम्पल बनाएं। जब माता पिता और घर में बड़े लोग फल और सब्जियां ज्यादा खाएंगे तो बच्चे भी हेल्दी खाना खाना सीखेंगे। बच्चों के खाने की लाइफस्टाइल भी चेंज होगी। अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक के बजाय फलों का जूस दें। फ्रूट जूस में फैट नहीं होता और उचित अनुपात में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अपने बच्चे को नाश्ता जरूर दें। नाश्ता तेल में पका वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि हेल्दी होना चाहिए। रिसर्च बताती है कि जो बच्चे हेल्दी नाश्ता करते हैं उनका वेट जल्दी से कम होता है। नाश्ते में फल भी दे सकते हैं, सोया मिल्क दे सकते हैं। नाश्ते और लंच के बीच में अगर बच्चे को भूख लगती है तो बच्चे गलत खाना खाते हैं, जैसे स्वीट्स, चॉकलेट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि। इस समय बच्चे को सेब, केला, गाजर, खीरा या और कुछ हेल्दी चीज दें। यह एक अच्छे माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का खाने पीने का पैटर्न ऐसे सेट करे कि ये हेल्दी हो। बच्चे का साल में एक बार कम से कम वजन और चेकअप जरूर करवाएं। अगर बच्चे को किसी बीमारी से संबंधित मोटापा है तो उस बीमारी का निदान जरूरी है।

बहनों, अभी हमने और आपने सुनी आरोग्य क्रम के अंतर्गत वार्ता। विषय था छोटे बच्चों में बढ़ता मोटापा, कारण और निवारण। इस विषय पर पूरी जानकारी हमें दी डॉक्टर अंशु शर्मा ने। इसी के साथ हम पुनः रुख करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं यह गीत।

बहनों, आज मौसम बहुत ही खुशनुमा है। सुबह से ही रिमझिम बरसात की बूंदें मन को आनंदित कर रही हैं। चारों ओर ठंडक और हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन यही मौसम हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है यदि हम ध्यान ना दें तो। बहनों, यह मौसम हमें आनंद दे इस

हमें करना यह होगा कि बारिश में यदि हम भीग जाएं तो हम घर जाकर सबसे पहले कपड़े बदलें और सूखे कपड़ों को पहनें, शरीर को अच्छी तरह पोंछ लें। खाना हमेशा ताज़ा और गर्म बनाएं और खाएं। खुले में रखा या बासी भोजन खाने से बचें, क्योंकि इससे पेट की बीमारियां हो सकती हैं। साथी बहनों, इस मौसम में यदि आप उबला हुआ पानी या फिल्टर का पानी पीते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार करें। अदरक, तुलसी और हल्दी जैसी घरेलू चीज़ों का सीमित मात्रा में उपयोग करना भी लाभदायक हो सकता है। बहनों, होने को तो यह बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि हम इन पर भी ध्यान दे लें तो हम निश्चित ही इस मौसम का आनंद अपने परिवार के साथ ले पाएंगे और इस प्रकार गुनगुना पाएंगे।

काली मेघा पानी तो बरसाओ। इस मधुर गीत की समाप्ति के साथ ही आज के वनिता लोक कार्यक्रम

को भी समाप्त करने का हो गया है अब समय। आप इस मौसम का आनंद अपने परिवार के साथ लेते रहेंगे, इसी आशा के साथ मुझे यानी प्रियंका खंडेलवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

बहनें सुन रही थीं अभी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम लेके आई थी आपके बीच प्रियंका खंडेलवाल, FM 102.2 MHz पर, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये गीत फिल्म उड़ान से, आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की।

कुमार सानू अलका याग्निक को अभी आपने सुना इस गीत में, जिसे लिया था फिल्म उड़ान से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। आवाज़ें उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की, संगीत इस्माइल दरबार का।

गीत महबूब का, संगीत इस्माइल दरबार का। फिल्म हम दिल दे चुके सनम से ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ दे रहे थे गीत को उदित नारायण, अलका याग्निक और साथी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और उसके बाद हिंदी समाचार। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू।

0: विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल

0: यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी

0: साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT और CIET द्वारा आयोजित कार्यक्रम उमंग।

0: ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
1: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
1: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, और सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
1: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
1: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। जो कपिलवस्तु नगर

0: एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है। लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
4: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है

0: कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
1: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
6: गाड़ी में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
5: इसके पास जा रहा है।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
0: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए है। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: आज्ञा तात।
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: राह पलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी,

0: छोटे छोटे बीज हैं,
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है, और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय 2:59.38 होने को हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हमारी दूसरी सभा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस युवाणी के कार्यक्रम में आपसे बातचीत करेंगे नई सोच के साथ संस्कारों से बंधे रहें अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और विश्व शतरंज दिवस। जी हाँ, तो सबसे पहले बातचीत करते हैं संस्कारों में बंधे रहें आज के युवा। बात बिल्कुल सही है, कारण ये कि यदि हम शिक्षित हो रहे हैं और हमारे अंदर कहीं ना कहीं नैतिकता का अभाव है, कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव है, तो कहते भी हैं कि धन बल जनबल बुद्धि अपार और सदाचार बिन सब बेकार। यानी कि आपके अंदर पैसे की अधिकता हो, यानी कि आपके पास पैसा है, शक्ति है और बुद्धि भी आपकी अपार है, लेकिन अगर आप सदाचार ही नहीं है, यानी आपके अंदर कुछ संस्कार नहीं है, या समाज हित, देश हित, या अपने कहते हैं कि परोपकार की भावना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप स्वार्थी होते चले जाते हैं। और जब स्वार्थी होते हैं तो आप अपने अधिकारों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या क्या हैं आपके, उसका भान नहीं रहता। तो बातचीत सिर्फ इतनी दोस्तों कि यदि हम अपनी जो हमारी आज का जो कहना चाहिए कि हमारे जो देश, हमारा राष्ट्र का जो हित है वो इसी बात में है, उसका जो चहुमुखी विकास है वो भी इसी बात पर निर्भर करता है कि हम शिक्षित हों और जिम्मेदार नागरिक बने देश के। और जिम्मेदारी का जो ये एहसास है, जो ये भाव है, ये आ सकता है हमारे संस्कारों से। हम संस्कारी हों, हम अपने प्रयास करें कि जीवन में जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित करे हैं उनको पाना है, तो हम अपने जीवन को पहले व्यवस्थित करें। हमारी एक जीवन शैली जो होनी चाहिए वो व्यवस्थित और अनुशासित होनी चाहिए। तो चीज़ें जब धीरे धीरे हम इस तरह से रखते हैं तो हम पाते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ उपलब्धि हम हासिल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे जो लक्ष्य हैं हम उन तक पहुँच रहे हैं, और हमने जो अब तक अपनी शिक्षा जो अपनी अर्जित करी है वो भी अब सार्थक हो रही है। क्योंकि आप अपनी शिक्षा से उसको जो मंथन करते हैं, वहाँ से एक विवेक जागृत होता है और आपको प्रयास करते हैं तो मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ ये चीज़ रह गई, तो अब मैं आने वाले दिनों में इस चीज़ को भी पूरा करूँगा किसी न किसी माध्यम से। या आपने अपने जीवन के लिए अगर कोई लक्ष्य भी बनाया हुआ है तो आपको लगता है कि भाई इस लक्ष्य के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ से इसकी मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ, या कहाँ से मैं इसके लिए जो आवश्यक कोर्स है वो मैं कहाँ से कर सकता हूँ, तब मैं इस लक्ष्य को पा पाऊँगा। तो कहने का यही कि हम अनुशासित होंगे, हमारे अंदर संस्कार रहेंगे, तो हम अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ परिवार में जो लोग हैं उनका भी हम ढंग से ध्यान रख पाएंगे। तो हमारी सोच, हमारे संस्कार हमेशा यही सिखाते हैं कि हम खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें।

0: और अब कार्यक्रम में आज के इस अंक में आप सुनिए पुलकित आचार्य से काव्यांकुर क्रम में काव्य पाठ। जी हाँ, चर्चा थी आज संस्कारों को लेकर, अनुशासन को लेकर और व्यवस्थित जीवन शैली को लेकर। इन सभी से ही हम सीख पाएंगे वो आचरण जिससे किसी न किसी को लाभ मिले, या कह सकते हैं कि हमारा जो पारिवारिक जो ताना बाना है वो ठीक ढंग से चल पाए। सुनते हैं पुलकित आचार्य से काव्यांकुर क्रम में काव्य पाठ।
1: मेरी पहली कविता बुजुर्गों पर केंद्रित है, जिसका शीर्षक है बुजुर्गों की मुसीबत। इस कविता के माध्यम से मैंने बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और भेदभाव पर प्रकाश डाला है। कल सभा बुलाई हमने बुजुर्गों की, उसमें आए दादा दादी, नाना नानी, चिंटू पिंटू की। सभा का विषय था बुजुर्गों की मुसीबत। सभी बुजुर्ग लाए थे अपनी अपनी आफत। चिंटू के दादा हैं श्रीमान लालवानी। अब सुनो उनकी कहानी। खांसते हुए की उन्होंने शुरुआत, बोले सुनो भाइयों, मेरी ये है बात कि मुझे मिठाइयों का है बहुत शौक, पर मेरे दोनों बेटे लगाते हैं रोक। एक दिन बेटे से मिठाई मंगवाई, क्रोधवश मेरी बहू बोली अभी आई। जब देखो तब आप मिठाई खाते रहते हो, कोई घर आए तो तखत पर बैठा बतियाते रहते हो, आज के बाद नहीं आएगी मिठाई। इस तरह हो जाती है हमें लड़ाई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं मेरे भाई। श्रीमान लालवानी थे इस सभा के मुखिया। आगे आई एक वृद्ध दुखिया, वह बोली पिंटू की नानी हूँ, शांति है मेरा नाम, मेरी बहू करवाती है मुझसे ढेर सारा काम। काम करते करते हो जाती है मुझे शाम, नहीं कर पाती हूँ मैं थोड़ा सा भी आराम, मेरा तो भला करेगा वो ऊपर वाला राम। सच पूछो तो मैं तो जैसे भोग रही हूँ नरक। अगले थे चिंटू के पापा श्रीमान रघुनायक, बोले मेरा है इकलौता बेटा, कभी भी मेरा कहना ना मानता, पर मेरी है तीन तीन पुत्री, हमेशा मुझे सताने पर तुली रहती। मन तो करता है कि धर दूं चपत इनमें दो चार, पर क्या करूं वृद्धावस्था से हूं लाचार। भगवान ने दी है मुझे निकम्मी संतान, जो नहीं रखती है मेरा जरा भी ध्यान, ऐसी संतान से तो अच्छे हैं गैर। खैर अगले थे पिंटू के नाना, बोले मैं हूं चंद्रभूषण, मेरी समस्या भी है भीषण जी। मेरी कमजोरी है कि मुझे चाहिए सुबह सुबह अखबार और एक कप गर्मा गर्म चाय कई कई बार, परंतु मेरी बहू हो जाती है परेशान, सो वो चाय में डाल देती है थोड़ा सा नान, और मुझे वो चाय पीनी पड़ती है, अगर ना पियो तो मुझसे झगड़ती है, कहती है मैंने तो इतनी मेहनत से बनाई है। अरे पी लीजिए पिताजी, ये भी एक प्रकार की दवाई है। अगली वृद्ध थी चिंटू की नानी, कुछ यूं कहती हैं अपनी कहानी कि मैं हूं सबकी प्यारी माता, बहुत दुख भरी है मेरी गाथा जी। किसी ज़माने में मैं अध्यापिका रहा करती थी और रिटायर्ड होने पर मुझे पेंशन मिला करती थी, पर पिछले 3 महीने से नहीं मिल रही है पेंशन। पेंशन ना मिलने से मुझे दिन रात रहती है यही टेंशन, घर में नहीं है थोड़ा सा भी राशन। मुखिया जी अब आप ही दो कुछ आश्वासन। देखते ही देखते सभी वृद्ध अपनी अपनी समस्या सुनाने के बाद बोले कि मुखिया जी करो हमारी समस्या दूर। पर ये क्या, मुखिया जी भी क्या करें, बेचारे वो भी हैं मजबूर। बोले भाइयों ये सब तो है वृद्धावस्था के खेल, अच्छा होगा कि हम सभी रहें परस्पर बना के मेल, तभी चल पाएगी हम सबके जीवन की रेल। फिर क्या था, मुखिया जी के मित्र आए हैं और वो खड़े होकर चल दिए और सबके प्रश्न धरे के धरे रह गए। यही है समस्या सबसे बड़ी। पिंटू की दादी हो गई खड़ी क्योंकि उसकी बहू ने उसे बुलाया है।

0: चिंटू के पापा को मंदिर जाना है पर उसकी पुत्री को उन्हें सताना है, और पिंटू के नाना ने भी की बाय बाय, बोले बहू क्या मुझे मिलेगी एक कप चाय? चिंटू की नानी इंतज़ार कर रही है पेंशन का, और इसी टेंशन में चल रही है उसकी नौका। चिंटू पिंटू दोनों एक साथ बोले कि सभी अपने कर्मों का फलते हैं भोग, बड़े लोग बड़े लोग। अतः वृद्धों की समस्याओं का तो मेरा मानना है एक ही मंत्र है, नौन कौन और मौन, कि वे ना दें ध्यान कि दरवाजे पे है कौन, और ना देखें कि सब्जी में कितना है नौन, और हरि नाम जपते हुए घर में रहें मौन। अपनी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी अगली कविता पेश करना चाह रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बापू तुम फिर से आ जाओ। अपनी इस कविता के माध्यम से मैंने बापू जी को याद किया है, क्योंकि आज देश की स्थिति को देखते हुए हमें बापू के सिद्धांत व उसूलों पर चलने की आवश्यकता है। कि लाठी का लेते जो सहारा, सत्य अहिंसा था जिनका नारा, आज भी पूछता है जिन्हें देश सारा, बच्चा बच्चा था जिनकी आँख का तारा, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा जाओ, बापू तुम फिर से आ जाओ। जिनका था खादी गंगवेश, तन पर था सिर्फ खादी शेष, और सर पर नहीं थे केश, आज भी उन्हें पूछता है सारा देश, अपना नारा सुना जाओ, बापू तुम फिर से आ जाओ। आज देश को है तुम्हारा इंतज़ार, तुम्हारे बिना नहीं चल सकती है सरकार, हर रोज़ बढ़ती है जनसंख्या कई हज़ार, एक बार फिर ले लो तुम अवतार, इंतज़ार की गलियां मिटा जाओ, बापू तुम फिर से आ जाओ। अंग्रेजों ने ढाई है हम पे कई सितम, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है ख़त्म, हम सब खाते हैं ये कसम कि विकसित करेंगे देश को हम, अपना नारा सुना जाओ, बापू तुम फिर से आ जाओ। अब तुमसे ही है हमारी आस, देश का कर दो चहुमुखी विकास, अमन का कर दो चारों ओर प्रकाश, रच दो अब तुम नया इतिहास, धर्म का मार्ग दिखा जाओ, बापू तुम फिर से आ जाओ। सरकार को है बस अपनी चिंता, हर नेता ठाट बाट से रहता, झूठे सपने देख बहकती है जनता, गरीब को नसीब नहीं है भोजन लत्ता, राम राज फिर से कर जाओ, बापू अब तुम जल्दी आ जाओ। आज का इंसान पैसे के पीछे है भागता, भगवान के स्थान पर पैसे को है पूछता, महंगाई की मार को लोग है झेलते, परंतु राजनेता जगह जगह महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते, इन दृश्यों से मुक्ति दिला जाओ, बापू तुम फिर से आ जाओ। अपनी अंतिम पंक्तियों के साथ मैं मोहित करना चाहूँगा कि कौन कहता है कि देश आज़ाद हो गया, मैं तो कहता हूँ कि एक मनुष्य मनुष्य का गुलाम हो गया, देश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, देखो वो बेचारा गरीब लुट गया बर्बाद हो गया, देखो वो बेचारा गरीब लुट गया बर्बाद हो गया, गांधीगिरी सिखा जाओ, बापू प्लीज अब जल्दी आ जाओ।
1: तो अभी आप सुन रहे थे काव्यांकुर के क्रम में पुलकित आचार्य का काव्य पाठ। श्रोताओं, आज 20 जुलाई है, विश्व शतरंज दिवस आज के दिन मनाते हैं। दोस्तों, ये दिन उस खेल को समर्पित है जो केवल मोहरों की चाल नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य, रणनीति और दूरदर्शिता का अद्भुत संगम है। शतरंज का इतिहास भारत की प्राचीन भूमि से जुड़ा माना जाता है। माना जाता है कि इसके शुरुआत चतुरंग नामक खेल से हुई, जो समय के साथ दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा और आज एक वैश्विक खेल बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 से 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, ताकि इस खेल के शैक्षिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, शतरंज हमें सिखाता है कि जीवन में हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। एक छोटी सी चाल भी भविष्य की दिशा बदल सकती है, और यही कारण है कि खेल बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी के लिए उपयोगी माना जाता है। ये एकाग्रता बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को मजबूत करता है और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करता है। भारत ने शतरंज की दुनिया को अनेक महान खिलाड़ी दिए हैं। विश्वनाथन आनंद ने भारतीय शतरंज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं नई पीढ़ी के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनकी उपलब्धियां लाखों युवाओं को इस खेल की ओर प्रेरित कर रही हैं। आज डिजिटल युग में मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मंचों के माध्यम से शतरंज सीखना और खेलना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। विद्यालयों में भी इसे बौद्धिक विकास के एक प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। तो आइए, विश्व शतरंज दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि इस खेल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और सोचने की एक सशक्त कला के रूप में अपनाएंगे, क्योंकि शतरंज की विसात पर सीखी गई सूझबूझ जीवन की हर विसात पर सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

0: तो अभी आप सुन रहे थे शतरंज फिल्म का यगीत। मोहम्मद रफी की आवाज में इंदिवर की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन था।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मना रहे हैं।

दिन मानव इतिहास की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद दिलाता है जब वर्ष 1969 में अपोलो 11 मिशन के माध्यम से पहली बार मानव ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये दिवस हमें अंतरिक्ष विज्ञान, वैज्ञानिक जिज्ञासा और वैश्विक सहयोग के महत्व का संदेश देता है। चंद्रमा सदियों से मानव की कल्पना, साहित्य और विज्ञान का केंद्र रहा है दोस्तों। कभी वो कवियों की प्रेरणा बना तो कभी वैज्ञानिकों के लिए अनगिनत रहस्यों का स्रोत। आज आधुनिक तकनीकी की सहायता से चंद्रमा पर जल, बर्फ, खनिजों और भविष्य में मानव बस्तियों की संभावनाओं पर शोध किया जा रहा है। भारत भी चंद्र अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर जल अणुओं के प्रमाण खोजने में अहम योगदान दिया, जबकि चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला विश्व का पहला देश बना दिया। ये उपलब्धि भारतीय विज्ञान, तकनीकी और नवाचार की क्षमता का प्रतीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि जिज्ञासा, ज्ञान और निरंतर प्रयास से असंभव लगने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम युव वाणी को समाप्त करने की मुझे यानी अरविंद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे 5वीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता

0: को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की आठवीं बैठक आज से हो रही है। दो दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संध्या 6:15 पर किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और पशु पोषण में खनिज लवण। इसी कार्यक्रम के तहत स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा पशुओं में अफरा रोग बचाव और उपचार। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से बातचीत करेंगे मृणालिनी दीक्षित, साथ ही आनंद ले सकेंगे कुछ ब्रज लोक गीतों का। संध्या 6:45 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिएगा ब्रज वार्ता, ब्रज वसुंधरा के गौरव महाकवि नवनीत। वार्ताकार होंगे मोहन लाल प्रेमी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा संध्या 7:31 पर। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:15 पर देशगान, रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से। आज इस फिल्म के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म पद्मावत के कुछ गाने। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी इस दूसरी सभा का।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश गान।

समवेत स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं ममता रानी।

कार्यक्रम सुनवे वारे सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। और भैयाओं देखो कि मौसम तो हमारा बढ़िया चल रहा है ना, आज तो बढ़िया सुहाना मौसम है गयो हमारे सभी के काजे पशुअन के लिए, हमारे आपके लिए। और पर हमें तो अभी अपने पशु जंगरेन की चिंता करनी पड़े, ध्यान रखना पड़े। बिल्कुल सही बात है, उनको रख रखाव, उनको खान पीन की जो बात है ना, क्योंकि पशु बड़ो कीमती आवे भैया। देखो ऐसा तो इतना है, थोड़ा मोड़ो 100-200 रुपया को ऐसी बात है कि काम है जाए हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि जो हमारे पशु हैं उनके लिए सभी चीज़ की, जैसे उन्हें रखवो है जहाँ साफ सफाई है उनके लिए, और खाएवे की बात है कि उन्हें हम दाना चारा खूब खवावें, हरो दोनों टाइम खवाए रहे हैं। पर फिर खनिज लवण की पूर्ति के कागजे हम कहाँ करें, पोषक तत्व की कमी है जावे ते तो पशु बीमार है जाए ना, अस्वस्थ है जाए, और जो दूध देवे वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा कम है जाए। जाले अपने पशु को हम नियमित रूप से जो दलिया है बाय बनाए के खिलाए सकें, और जो दानो है जो जौ को बाकू भी खिलाएं, और खनिज लवण है जो कि बाजार में खनिज मिश्रण आपको तैयार मिले भैया, बाते वाकी पूर्ति है जावे। जो पोषक तत्व हमारे पशु के काजे चाहिए वाकी वो पूर्ति कर देते हैं। और भैया कम पैसा में आ जाते हैं, ज़्यादा महंगो ना आवे, एक कट्टा बोरा खरीद लाम दे माते, और अपने पशु को है का नियमित रूप से खमाती रहो, जाते हमारे पशु को जो है का रोग प्रतिरोधक क्षमता है

वो बढ़े हैं, यानी कि पशु स्वस्थ रहवे हैं, बीमार कम होवे हैं, और शारीरिक रूप से जब हमारा पशु स्वस्थ रहेगो तो खुश रहेगो ना भैया, और हमें भी टाइम मिल जावेगो, हमारी भी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। जैसे हम दूध को काम करते हैं, या हमारा समय है जो हमारा वामे उत्पादन बढ़ जाएगा तो हमें लाभ मिलेगा, आर्थिक रूप से हमें लाभ होवेगा, हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे, हम और कार्य कर सकें और अपने, फिर ये तो प्रकृति की बात है, सृष्टि की भी बात है, तो सृष्टि के रचयिता हैं हमारे भोलेनाथ, यानी कि भोले शंभु बम बम, जिनके नाम से दुनिया जाग जाए है, तो उन्हीं को स्मरण करे हैं और सुने हैं भूरेश कुमार वर्मा को गायो भयो ये लोग गीत बम बम भोले लहरी।

0: तो भैया वो आपने सुनो भूरेश कुमार वर्मा को गायो भयो ये लोकगीत, बम बम भोले लहरी गंगा गहरी। गंगा और यमुना कोई भी नदी होए तो बरसात तो आएंगी और आगे खूब इनमें जो है काय गहराई तो होती है, पर हमारे पशु जेंगरे इनको भी छोड़ दे हमें, हम तालाब पोखरन में आजकल बारिश को पानी है नहाए धोए आएंगे वहां में, है कि ना, हम अपनों बचाव कर लेते हैं है? और जीना देखती कि हमारे जो पशु हैं ऐसे में पशु उनको बीमारी लग जाते हैं, अगर कहूँ उन्हें दानो चारो ऐसो बाहर कछु खाए लो हरो ज्यादा खाए लो तो उन्हें अफरा बन जाते हैं कि ना, पेट फूल जाता है। अरे बड़ो महंगो पशु आ रहो भैया, बड़ो ध्यान रखना पड़ता है आपको, चौकसी रखनी पड़ता है, नेक तकलीफ हो तुरंत वाकू डॉक्टर को दिखाओ और इलाज जरूर कराओ और उपचार रह जाएगा तो हमारा पशु स्वस्थ रह जाएगा ना। तो भैया बात ऐसी है कि नेकाद हमें खुदो जानकारी होनी चाहिए, तो बाकी काजे का करते हैं हम और आप सुनते हैं विशेषज्ञ की जानकारी, पशुओं में अफरा रोग बचाव और उपचार, और इनसे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से बातचीत है मृणालिनी दीक्षित की।
1: रेडियो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आप पशुपालन, खेती बाड़ी सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन को कार्य करने वाले जो भैया हैं वो परेशानी से सबसे ज़्यादा सामना उनको करना पड़े है कि उनकी पशुओं में कोई बीमारी है जाए या उनको समझ में नहीं आए तो उनके जो रोजगार है, जो आय है पशुओं से, वो बहुत कम हो जाती है, उनके सामने ये समस्या आ जाती है। क्योंकि बेजुबान पशु अपनी बात को कहने में असमर्थ हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि हमें इनकी बीमारी को पता चल जाए, लेकिन पशुओं में जब खाना पीना छूट जाता है, किसी तरह की कोई बीमारी होती है, मुख्य बीमारी के रूप में आता है कि पेट में उसके कोई समस्या है तो वो खाना पीना छोड़ देता है। तो इस तरह की जो बीमारी होती है, जैसे पशुओं में हमारी ग्रामीण भाषा में बोला जाता है अफरा, या कोई परेशानी, बहन जी गैस बन रही है, या को पेट फूल लो है, पता ही ना चल रहा का है रहे, तो इन्हीं विषय पे आज हम आपको जानकारी दिलवा रहे हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से, पशुओं में अफरा और वाको उपचार और कातनियाते हम वाको बचाव कर सकें। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार बहन जी।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि पशुओं में इस तरह की बीमारियां जो सुनने में आता है गांव में, कहते हैं कि अरे बहन जी सवेरे ते चार आना खा रही भैंस, जागो तो पेट फूरो सो लग रहा है, तो
2: जी
1: ये क्या समस्या है?
2: देखिए, ये बड़ा समसामयिक सा विषय उठाया गया पशुओं में अफरा, और ये बता दूं कि बड़ा तीव्र अफरा हो तो ये पशुओं में अचानक मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण भी बन जाता है। समस्या छोटी होती है पर इससे पशुओं की हमारे बहुत कम समय में मृत्यु हो सकती है। अफरा हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे चारेदानी वाली पशु होते हैं, गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, क्योंकि इनकी चारेदानी बहुत बड़ी होती है और ये पशु को भूस खिला लेते हैं, उसको भी हजम कर लेते हैं, पेड़ पत्ती डालियाँ भी खाते हैं, उनको भी चारा हजम कर लेते हैं, और इस पाचन की प्रक्रिया के दौरान इनके जो चारेदानी होती है उसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा पशु सीधे हजम नहीं कर सकता इन चीज़ों को। हम देखते हैं कि उस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी गैस बनती है, ये एक वैसी ही प्रक्रिया होती है, अगर हम समझाने के लिए कहें, जैसे घर में सिरका इत्यादि बनाने के लिए गन्ने के रस से दादी नानी लोग बनाती थी, तो उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है और काफी मात्रा में गैस उत्पन्न होती है। हमारे पशु के पेट में यदि कोई समस्या नहीं है तो ये कितनी भी गैस बनती रहती है ये धीरे धीरे उसके मुंह से बीच बीच में निकलती रहती है, तो वो अफरा उत्पन्न नहीं होता है। पर अगर इसकी चारेदानी में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, बहुत भारी मात्रा में गैस इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम अफरा कहते हैं। अच्छा, हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई अक्सर ये भी कहते हैं कि पेट फूल रहा है, तो पेट फूलने में हमेशा अफरा भी नहीं होता। कई बार
1: जी।
2: अफरा हम वहीं कहते हैं जहां पर हवा इकट्ठा हो रही है, गैस इकट्ठा हो रही है। कई बार उसमें जो पचा हुआ चारा है उसको पीछे आंतों में जाने में भी रुकावट उत्पन्न हो जाती है, उसकी वजह से उसके चारेदानी में चारा इकट्ठा भी होता चला जाता है और उसकी वजह से भी पेट फूलना शुरू हो जाता है, हालांकि वो अफरा नहीं होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बताई है कि भाई पहचान कैसे करें। अच्छा, मुख्य रूप से इस अफरा रोग के लक्षण क्या होते हैं, मुख्य लक्षण क्या होते हैं?
2: देखिए, लक्षण पहचानना बड़ा आसान सा काम है कि हम अपने इसमें मैं समझाऊं कि जो चारेदानी होती है वो पशु के शरीर में बाएं तरफ, बाएं हिस्से में होती है उसके पेट में, तो आप जैसे ही देखेंगे क्या कहते हैं कि पशु का बायां तरफ का हिस्सा फूलता चला जाएगा, तो पहचानने में हमारे पशुपालक को कोई समस्या नहीं होती, वो देख के ही बड़े आराम से पहचान लेता है। अगर थोड़ी बगल से आप देखेंगे तो हो सकता है उतना स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, परंतु आप पशु के एक बार पीछे खड़े हो जाएं,

0: सामान्य पशु का बायां और दायां दोनों तरफ का हिस्सा एक जैसा समान रूप से दिखना
1: है।
0: चाहिए।
1: जी।
0: अगर आप देख रहे हैं कि बायां तरफ का हिस्सा अत्यधिक फूला हुआ
1: जी।
0: दिख रहा है तो ये कहा जा सकता है कि पशु को अफरा हो गया है या चारा चारेदानी में इकट्ठा होता चला जा रहा है। पशु को तकलीफ भी महसूस होती है, पेट में दर्द होता है तो वो बार बार चिल्लाता भी है। तो इसमें ऐसे में कोई बुखार वगैरह नहीं होता है, लेकिन बस वो पेट फूलता है उसकी वजह से उसको काफी दर्द महसूस होता है। और ये सब समस्या रहेगी तो खाना पीना तो पशु हमारा बंद कर देगा, मुंह से अत्यधिक लार भी कई बार निकलना शुरू हो जाती है।
1: जी जी। तो इस तरह की समस्या, मतलब ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो पशुपालक भाई पहचान सकते हैं कि अफरा की बीमारी
0: की समस्या
1: से
0: है।
1: अच्छा, ये होता किस कारण से?
0: देखिए, अफरा को हम दो तरह का अफरा कहते हैं। एक तो अंग्रेजी में कहते हैं फ्री गैस, यानी कि मुक्त गैस, केवल गैस गैस हवा ही भरी रहती है उसके चारेदानी में। और एक दूसरे प्रकार का अफरा होता है जिसमें झाग इकट्ठा होने लगता है उसके पेट में। तो इसके कई कारण हैं। जो केवल गैस ही अगर इकट्ठा हो रही है, क्योंकि वो गैस उसके शरीर से बाहर निकलती है, वो गैस बाहर निकलती है खाने की नली से, आहार नली से बीच में। तो अक्सर जब हमारे किसान भाई देखे होंगे कि जो छुट्टा पशु खासतौर से मंडी वगैरह में विचरण करते रहते हैं, आलू वगैरह का जब मंडी में आवक शुरू होती है तो वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, वो आलू या कोई सब्जी, नींबू, चुकंदर उनके आहार नली में, गले में जाके फंस जाता है। तो ऐसे में घंटे भर के अंदर ही वो पशु पूरा गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो गैस निकलने का रास्ता था वो
1: बंद
0: हो गया। तो जाहिर सी बात है वो गैस निकल नहीं पा रही है तो इकट्ठा होने लगती है। दूसरी चीज, टिटनस का अगर लक्षण आना शुरू होता है किसी पशु में, तो वहां पे भी आहार नली का संकुचन हो जाता है। वहां पर भी संकुचन हो गया तो रास्ता बंद हो गया, तो गैस नहीं निकल पा रही है। तीसरा, ब्याने के बाद कई पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो उस कैल्शियम की कमी होने की वजह से चारेदानी का जो संकुचन होता रहता है, बीच बीच में मूवमेंट होता है, वो नहीं हो पाता और गैस बाहर नहीं निकाल पाती चारेदानी, उसकी वजह से भी ये इकट्ठा हो जाता है।
1: जी।
0: तो ये तो रहा मुक्त गैस जिसमें इकट्ठा होती है। इसका इलाज तो तब तक संभव है जब तक वो आहार नली में कोई चीज फंसी है उसको निकाला ना जाए, लेकिन उस दौरान आप डॉक्टर से जब संपर्क करते हैं तो वो चारेदानी को पंक्चर करके उसमें से गैस
1: निकाल
0: लेता है। तो कम से कम पशु हमारा मरने से थोड़ी देर के लिए बच जाता है, और बाकी ऑपरेशन वगैरह करके या किसी भी तरीके से उसकी आहार नली में जो रुकावट है वो दूर कर दी जाती है, या बाकी चीज का उपचार करते हैं तो ठीक हो जाता है अफरा। समस्या दूसरे प्रकार का अफरा जो झाग वाली समस्या है वो ज्यादा गंभीर होती है, क्योंकि ऐसे में जब हमारा कोई चिकित्सक को हम बुलाते हैं और वो चारेदानी में पंचर भी करता है तो झाग होने की वजह से वो गैस निकल नहीं पाती चारेदानी में से, तो उसके बावजूद वो गैस भरी रहती है। अब सोचने की बात है कि ये बनता क्यों है झाग, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ये समस्या ज्यादा देखने में आती है जब हमारी रबी का सीजन की शुरुआत होती है, और जैसा हमारे क्षेत्र में सारे पशुपालक भाई जानते हैं तो चारे के रूप में सबसे ज्यादा बरसीम बोई जाती है। हालांकि रबी में जई भी खिलाई जा सकती है, पशुपालक भाइयों उसके बारे में भी विचार करना चाहिए, परंतु बरसीम का जब शुरुआती बढ़त की कटिंग लेते हैं हमारे पशुपालक भाई, पहली दूसरी, जब पौधा मुलायम होता है
1: जी,
0: तो उसमें उसकी पत्तियों में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। जब अत्यधिक मात्रा में वो ताजी बरसीम खिला देते हैं हमारे पशुपालक भाई
1: जी,
0: तो वो उससे जो चारेदानी के अंदर का मटेरियल है वो लिसलिसापन उसमें बनता है, उसकी वजह से झाग काफी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दूसरा समस्या ज्यादातर आती है जो हमारे पशुपालक भाई डेयरी इत्यादि चलाते हैं, शहरी क्षेत्र में पशु पालते हैं और दाना ज्यादा
1: खिला देते
0: हैं,
1: मतलब तो इसे लालच में कि वो दूध
0: ज्यादा दे
1: मिल जाएगा।
0: और दाने में भी उतनी समस्या नहीं है, अगर आपका पशु पहले से ही दाना खाता आता रहा है तो उसको दिक्कत नहीं होती। अक्सर ये देखने में आता है कि हम पैंठ में गए, किसी किसान से हमने पशु खरीद लिया, अब वो किसान जो था वो पशु को चरने के लिए भेजता था या भूस खिलाता था या हरा चारा खिलाता था, और हम डेयरी चलाते हैं, हम उसको 5 किलो दाना देना शुरू कर दिया। तो समस्या दाने से नहीं होती, समस्या होता है कि कितनी जल्दी आपने परिवर्तित कर दिया उसका भोजन, कि वो एक दिन पहले तक तो वो चारा भूसा इत्यादि खाता था, अगले दिन से वो
1: दाने
0: पे हमने उसको रख दिया
1: और एकदम से उसकी मात्रा अधिक हो गई,
0: एकदम से अधिक मात्रा देना शुरू किया
1: जी,
0: तो ऐसे में चारेदानी में एसिड बनना, थोड़ा सा अम्ल बनना अधिक शुरू हो जाता है, और जब अम्ल बनना ज्यादा शुरू होता है तो भी ये लिसलिसापन उसका बढ़ता है और झाग बनना शुरू हो जाता है। तो दाना देने में समस्या नहीं है, परंतु यहाँ पर मैं ये सलाह देना चाहूंगा पशुपालक भाइयों को कि यदि आपका पशु पहले चारा खाता था या भूसा खाता था, दाना बिल्कुल नहीं खाता था, तो जो दाना देना शुरू करें वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। जैसे एक हफ्ते आप आधा किलो, 1 किलो देना शुरू करें, 8-10 दिन बाद बढ़ा के उसको 1.5 किलो करें, ऐसे धीरे धीरे करके 1-1.5 माह का समय लेते हुए उसको जितना दाना आप देते हैं बाकी पशुओं को वो दें,
1: उसकी मात्रा जो है वो समय समय
0: समय पर धीरे धीरे बढ़ाएं, अचानक से
1: एकदम से ना
0: बढ़ा दें। तो ये झाग वाले अफरे के दो बहुत बड़े कारण हैं, और झाग वाले अफरे का उपचार भी थोड़ा कठिन होता है क्योंकि गैस आसानी से निकल नहीं पाती उसके।
1: डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि कभी कभी जैसे कि नए भूसे को खाने के बाद भी ये परेशानी आती हो?

0: भूसे को खाने के बाद पेट फूलता है, उसको हम वैज्ञानिक रूप से अफरा नहीं कह सकते, क्योंकि गैस नहीं भरती उसमें,
1: जी
0: उसमें वो भूसा ही पेट में जाके फूल जाता है और उसको चारेदानी को एक तरह से कहें जाम कर देता है, वो
1: जी
0: ठीक से पीछे आंतों में नहीं जा पाता,
1: जा पाता
0: तो
1: है
0: वो पेट में इकट्ठा होता है। अंग्रेजी में इसको हम इम्पैक्शन कहते हैं या चारा फंस जाना
1: जी,
0: कहते हैं, लेकिन ये भी देखने में बाहर से हमारा किसान देखेगा तो पेट फूला हुआ ही दिखाई देगा,
1: दिखाई
0: उसको
1: देता
0: दर्द
1: है।
0: महसूस

0: से वो पचा हुआ चारा पीछे आंतों में जाता है
1: जी,
0: उस रास्ते को वो रह रहकर ब्लॉक करती है,
1: बंद कर देती है,
0: शुरू करती है। तो ऐसे में आप उन गऊओं को देखें जो बाजार में घूम रही होती हैं, उनका पेट बिल्कुल ढोलक की तरह फूला हुआ सा दिखाई
1: कहीं कहीं डॉक्टर साहब ऐसा भी देखने को मिलता है गांव में कि मतलब एक एरिया में जिसको हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं ट्यूमर टाइप का, ट्यूमर जैसा हो गया तो एक एक एरिया में फूल जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि
0: वो समस्या हर्निया है।
1: अच्छा, पॉलीथीन
0: की वजह से पेट फूलता है तो वो बायां तरफ फूलेगा, वो जो एक गुमर सा कई बार पेट में दिखाई देता है वो तो प्रायः हर्निया का स्वरूप होता है
1: जी। मतलब तो, कहने का ये है आपका आशय है कि पशुपालकों को ये सोचना है कि हर बीमारी अलग है, ये पहचान लें, ये ना देखें कि उनका पेट फूल रहा है एक साइड से तो ये अफरा हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, वो अलग अलग
0: समस्याएं भी हो सकती हैं
1: जी। तो अफरा के लिए उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि पेट फूला हुआ नजर आता है तो ये महसूस करें कि अफरा है इसको।
0: जी जी, अब देखिए जब हम अपने किसी चिकित्सक को वहां बुलाते हैं पहली चीज तो ये कहूंगा कि स्वयं उसको पंचर इत्यादि करने का प्रयास
1: ना करें
0: क्योंकि शरीर पेट के अंदर और भी अंग होते हैं, किसी और अंग में किसी खून की नस में चोट पहुंच सकती है। आप अच्छे चिकित्सक को बुलाएं अपने ब्लॉक इत्यादि में, उनसे चिकित्सा कराएं, और यदि अफरा है तो उसका इलाज संभव है आपके क्षेत्र में ही, वो गैस निकल गई। और जो झाग वाला अफरा हम कह रहे थे तो उसकी भी कुछ दवाएं ऐसी आती हैं जिसको हम जब पशु को पिला देते हैं या उसके चारेदानी में डाल देते हैं तो ये झाग टूट जाता है एक तरह से। जब झाग टूट जाता है वो गैस मुक्त हो जाती है और वो पशु डकार के साथ उसको आराम से निकाल सकता है। और घरेलू नुस्खा की अगर बात इसमें करते हैं अगर हम थोड़ा, तो कई पशुपालक भाई जैसे हम बच्चों में भी प्रयोग करते हैं हींग, अजवाइन, काला नमक इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ये भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है, ये भी कई बार काम करता है। दूसरा, यदि आज की डेट में सबके घर में रिफाइंड तेल
1: मिल जाता है
0: जी। तो आप झाग वाला अफरा है तो उस पशु को आप आराम आराम से आधा लीटर मीठा रिफाइंड का तेल, चाहे सूरजमुखी का हो चाहे मूंगफली इत्यादि का हो, जो भी आपके घर पे उपलब्ध है, वो आप उसको आराम आराम से पिलाएं तो वो भी पेट में जाके इस झाग को तोड़ने का काम करता है
1: और आसानी से पशु को आराम
0: आसानी से। अगर आपको दुकान नहीं, बंद है, दूर है बाजार, तो आप ये नुस्खा भी आजमा सकते हैं और आप इस मीठे तेल में 25-50 ग्राम तारपीन का तेल भी मिला दें तो वो कई बार असर उसका बढ़ जाता है। बस यहाँ ये ध्यान रखें हमारे पशुपालक भाई कि तारपीन का तेल पेंट की दुकान से न खरीदें कि कई बार मिट्टी के तेल की मिलावट इत्यादि उसमें हो जाती है। तारपीन का तेल मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध होता है जो खाया जा सकता है,
1: लेकिन मात्रा उसकी डॉक्टर की सलाह से लें,
0: अपने मन से ना दें,
1: अपने मन से ना दें क्योंकि अधिक मात्रा होने पर वो नुकसान भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब अंत में ये जानना चाहूंगी कि अफरा रोग से जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो किन किन बातों का ध्यान रख के बचाव कर सकते हैं?
0: देखिए पहली चीज तो पशु को आप खुला ना छोड़ें बाजार इत्यादि में
1: जी।
0: ये बार बार सरकार भी कहती है, हम लोग भी कहते हैं, क्योंकि पशु मंडी में जाएगा तो पन्नी पॉलीथीन की बात अभी हमने की और कोई ऐसी चीज उसने खाली जो उसकी आहार नली में फंस गई, तो एक तो ये समस्या का ध्यान रखें। दूसरा, जो झाग वाले अफरे की हमने बात करी तो उसमें जब हमारा रबी की फसल आती है और जब बरसीम शुरुआती दौर में हम देते हैं तो हमारे किसान भाई ध्यान दें कि अगर आपके पास अधिक मात्रा में समुचित मात्रा में बरसीम उपलब्ध है भी तो भी सिर्फ और सिर्फ बरसीम के सहारे ही पशु को न रखें, उसमें आप भूस के साथ मिला के दे सकते हैं और नहीं तो उस बरसीम को काट के धूप में 2-3 घंटे आप हल्का सा सुखा दें, उसका पानी थोड़ा सा मर जाए तो अफरा पैदा करने की शक्ति उसमें थोड़ी
1: कम हो जाती है।
0: और वो जो दाना अगर आपको देना है, आप खरीद के लाए हैं, डेयरी चलाते हैं, तो उसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अचानक से ही अधिक मात्रा में दाना देना शुरू न करें, धीरे धीरे दाना बढ़ाएं।
1: मतलब आपके कहने का आशय ये है कि पशुपालक भाई चाहे वो चारा हो, चाहे वो भूस हो, चाहे वो दाना हो, चाहे वो रिफाइंड हो, कोई भी चीज या तो डॉक्टर की सलाह से दें और या उसकी मात्रा अधिक न दें।
0: आप जानकारी कर लें,
1: जानकारी कर लें।
0: डॉक्टर नहीं भी तो आप अपने चिकित्सक से फोन इत्यादि पर भी संपर्क करके जानकारी करके तब दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं, आप अपने स्तर से भी इस चीज को कर सकते हैं।
1: तो भैया अभी आपने जानकारी लेनी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से, पशुओं में अफरा एवं उसका उपचार और बचाव का तनिया से कर सके हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे हमारे किसान और पशुपालक भैया ओवी आधारित कार्यक्रम पशुओं में अफरा रोग बचाव और उपचार, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से मृणालिनी दीक्षित की बातचीत सुनी भैया आपने। तो बात यह है कि जो हमारे पशु हैं कीमती हैं, थोड़ी बहुत उन्हें हमें ध्यान रखना पूरी तरह से, और जैसे ही उन लगे कि अस्वस्थ हैं, हमारा पशु जुगाली ना कर रहो, खाए रो ना है और परेशान है, तो हमें पशु चिकित्सक के पास जाके ही उपचार कराना है। अपनी इच्छा से हमें उपचार ना करना है क्योंकि हमें वो पूर्ण जानकारी ना है। तो भैया ऐसा कभी ना करें और ध्यान रखें जा बात को। और भैया बात जाऊँ बात

को ध्यान है कि वर्षा को मौसम आवेगो और कार्यकारी बादल आएंगे और वर्षा संग में लेके आमत है, तो वह पानी को भी सुरक्षित रखियो अपने तालाब पोखरन में, और कारी बदरी आवेगी तो बरसेगी जरूर, बरसेगी तो ढोलक बाजेगी। सुने हैं या लोकगीत को माधुरी शर्मा को गायो भयो, आई बदरिया बरसन हारी।

माधुरी शर्मा को गायो भयो ये सुनो लोकगीत। और अब बता दूं मौसम की जानकारी, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अगले दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिशा, हवा की दिशा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम रहेगी। आंधी तूफान तेज हवा और मध्यम बारिश हैवे की संभावना करी गई है। और जिन भैया ने अभी धान की जो है कार्य रोपाई ना करी है तो अतिशीघ्र पूरी कर लें। और ज्वार तिल उड़द मूंग अरहर क्यों भैया आप बुवाई करें, अपने पशुअन को बिजली के खंभा के आसपास या पेड़ के नीचे ना बांधें। साफ सुथरी जगह पे पशुअन को ही रखें, उनके नीचे साफ सफाई रखें, क्योंकि जा समय वर्षा को समय आवेगो और चल रहे हो तो भैया अपने पशुओं को विशेष ध्यान रखो और हम भी विशेष ध्यान रखें हैं काय को, आप सबको और अपने समय को, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। और आज को ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम अब यहीं पे हुए है संपन्न। कार्यक्रम सुनवे वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।

अभी किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया ममता रानी ने। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में गोपी फिल्म का ये भजन, जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अलग अलग से आशा भोसले और यशदास के स्वर में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

आशु भोसले और यशुदास के स्वरों में भी आप सुन रहे थे अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी की ये भक्ति रचना आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये टाइटल भजन।

0: लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये भजन। पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था। और इसी के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम आप सुनेंगे आपसे कुछ ही पलों में।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट। बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए ब्रज वार्ता। ब्रज वसुंधरा के गौरव महाकवि नवनीत।
5: ब्रजभाषा की काव्य परंपरा में महाकवि नवनीत जी चतुर्वेदी को नाम अविस्मरणीय है। नवनीत जी ने अपने काव्य कौशल से ब्रजभाषा को नई समृद्धि और अद्भुत अलंकरण प्रदान किए हते। बिनकी विलक्षण कल्पना और अलंकारण सो परिपूर्ण कविताई ने ब्रजभाषा की कविता कामिनी को बड़ो ही सम्मोहक स्वरूप प्रदान कियो हो। ब्रजभाषा की पढ़ंत परिपाटी में श्री नवनीत जी के रचे भये अनेक छंद आजहू कर्ण गोचर होवे हैं। स्वर्गीय नवनीत जी को जन्म विक्रम संवत 1915 में अगहन के महीना में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मथुरा नगर में श्री यमुना जी के तट पे दाऊजी घाट स्थित मारू गली नाम के मोहल्ला में भयो हो। इनके पिता को नाम श्री बालमुकुंद चौबे हो। नवनीत जी के काव्य गुरु श्री गंगा दत्त जी चतुर्वेदी बड़े ही रस सिद्ध कवि और श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान हते। बाल्यावस्था में नवनीत जी को कविताई के संग संग व्यायाम और मल्ल विद्या में हूँ पर्याप्त रुचि हती। वे मथुरा के नागटीले पे स्थित बगीची पे प्रायः व्यायाम के निमित्त जायो करते हैं और यहीं पे अपने गुरु श्री गंगा प्रसाद जी से कविताई के गुर सीखते हते। नवनीत जी की असाधारण प्रतिभा को प्रमाण नागटीले के अखाड़े की भीतन पे बरसन देखो गयो। वे कभों कभों अपनी नई रची भई कविता को अखारे की भीत पे लिख दियो करते। ब्रजभाषा के वर्तमान कवि श्री यमुना प्रसाद प्रीतम ने मोकू या विषय में एक बड़ो रोचक संस्मरण बतायो कि लगभग 30-35 बरस पहले नागटीले अखारे पे स्वर्गीय नवनीत जी की हस्तलिपि में लिखो भयो एक छंद विद्यमान हो। या छंद में नवनीत जी ने नागटीले को महात्म्य वर्णन करते भय लिख्यो हो। सिद्धन को धाम अभिराम सदा भक्तन को मुनिन को मानस विचार हित हीले को नवनीत प्यारे ब्रजराज को विनोद बाग भाग वसुधा को रस जीवन रसीले को शंभु सहित विदित।

टीले को। युवावस्था में तो नवनी जी की काव्य प्रतिभा अपने परिपूर्णतम निखार पर पहुंच गई और बिन की गणना आधुनिक ब्रज काव्य के सर्वोच्च कवियन में हैवे लगी। देश विदेश में बिन की काव्य ध्वजा फहराईवे लगी। बिन के रचे भये छंद ब्रजभाषा काव्य के अनुरागी जनन के कंठ में आज हू विराजमान हैं। नैनन की अद्वितीय उपमाते ओतप्रोत बिन के रचे भये छंद आज हू ब्रजभाषा की पढ़ंत और काव्य गोष्ठीन में प्रायः सुनवे को मिल जाए हैं। तेरे नैननी के हरत गति मीनन की मेरे नैन चितवत रहत तव ओर हैं। तेरे नैन कंज क्रीट मेरे नैन मधुकर हैं। तेरे नैन चंद मेरे चंचल चकोर हैं। तेरे नैन सावन में उमड़ घुमड़ बरस परें।

एन चोर है। नवनीत जी को या ही रंग को एक और कविता है, तेरे नैन प्यारी अनुराग के अनूप कंज, तिन पे हमारे नैन मधुप अथोर हैं। नवनीत तेरे नैन मैन के मुसाहिब हैं, मेरे नैन ठाड़े करें बिनती कर जोर हैं। तेरे नैन कातिल हैं कतल।

चोरू हैं। काशी कवि समाज में कवि रत्न श्री नवनी जी को प्रमुख स्थान प्राप्त हो। एक बेर काहू विषय पे बिन्ने काशी कवि समाज के 40 कवियन को निरुत्तर कर दियो हो तो। नवनीत जी की कविताई पे प्रसन्न है के कांकरौली नरेश गोस्वामी श्री बालकृष्ण लाल जी ने बिनकू कविंद्र की उपाधि ते सम्मानित कियो हो। श्री नवनीत जी की ख्याति ते देश विदेश के अनेक विद्वान प्रभावित भय हते। प्रसिद्ध विदेशी विद्वान डॉक्टर गियर्सन और मैक्स मूलर तो मथुरा में बिन के घर पे आए के बिन के काव्य रस को रसास्वादन कर चुके हते। श्री नवनीत जी की विलक्षण उपमा सं युक्त कल्पना के प्रमाण स्वरूप बिन को रचो भयो यह कवित्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जैसी तेरी कटी तू वे सो मान कर प्यारी, जैसे तेरे कुछ तैसे बोलना उचारी है। जैसे तेरे ओठ तैसे नैनहू न कर आली, जैसी गति तैसी मति ही मैं बिचारी है। जैसी तेरी भौह तैसे पंथ मैं न दी जो पाए, जैसे तेरे नैन सो बड़ाई उरुधारी है।

विस्तारीय रीति काव्य की धारा में ऐसी अभिव्यक्ति नवनीत जी के अतिरिक्त अन्य काहू कवि की वाणी में दृष्टिगोचर नहीं होवे है। बिनकी इन विशेषतांते प्रभावित है कहीं ही मथुरा के तत्कालीन कलेक्टर श्री फ्रीमेंटल ने बिनकु स्वर्ण पदक प्रदान कियो हतो। श्री नवनीत जी की शिष्य परंपरा में प्रसिद्ध कविवर श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर के अतिरिक्त श्री गोपीनाथ जी बनकली, कविवर श्री देवी द्विज, अमृतध्वनि सम्राट कविवर श्री रामलला जी, श्री गोपीनाथ जी भैया और चैया चाचा जैसे विख्यात ब्रजभाषा कवि भय, जिनने नवनीत जी की काव्य लता को विकसित और सुरभित कियो। ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय गोविंद जी चतुर्वेदी हु इनके ही सुपुत्र हते। ब्रजभाषा के काव्य जगत में

इनके रचे हुए छंद सर्वथा बेजोड़ और अद्वितीय हैं। नायिका के मुख को चंद्रमा ते हु श्रेष्ठ बताते भय श्री नवनीत जी के रचे एक कवित्व को वर्णन जा प्रकार मिले है। की नो हो सखीरी व्रत पूनम प्रभात ही सो कर पकवान राखे विविध सुछंदना नवनीत पूजन की साज सब जोर जोर राखो हो बनाय भेस अमित अमंदना भैया की बहन यासों।

0: नाकों ऊपर अटापे चढ़ी मो मुख निहार के करे है चंद वंदना। ऐसे ऐसे विलक्षण छंद रचवे बारे कवि रत्न श्री नवनीत जी को कविता संग्रह बिन के जीवन काल में प्रकाशित न है सक्यो। तथापि बाद में बिन की कविताई के अनुरागी जनन ने बिन की अनेक रचनाएं प्रकाशित करवाई। श्री नवनीत जी के रचित ग्रंथन में प्रेम रत्न, श्यामांगावयव भूषण, नवनीत नवीनोत्सव संग्रह, कुब्जा पच्चीसी, गोदा मंगल, मूर्ख शतक, मनोरथ मुक्तावली, स्नेह शतक, वैष्णव धर्म, गोपी प्रेम, पीयूष प्रवाह, हरिहराष्टक, पावन पावस पचासा, हरिदास वंशानुचरित्र, गोपीनाथ जी को जीवन चरित, प्रश्नोत्तर, यमुना छप्पन भोग, छंद नवनीत और रहिमन शतक जैसे ग्रंथ प्रमुख हैं। ब्रज में श्री नवनीत जी के रचे हुए छंद आज हु बड़े चाव से पढ़े जाए हैं। श्री नवनीत जी आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन विक्रम संवत 1989 में गोलोकवासी भये, परंतु इनकी सरस काव्य कीर्ति आज हु ब्रज के कण कण में बसी भई है।
1: तो अभी आप सुन रहे थे ब्रजवार्ता, ब्रज वसुंधरा के गौरव महाकवि नवनीत। वार्ताकार थे मोहनलाल प्रेमी। और अब लीजिए सुनिए ये ब्रज लोकतान, स्वर है रमेश दत्त चतुर्वेदी का।

रमेश दत्त चतुर्वेदी की गाय इसी लोकदान के साथ ही ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा अब से कुछ ही पलों में। तब तक सुनिए ये ब्रज लोकदान।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, एससीआर के विकास से होगा बाराबंकी का विकास। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में संबंधित पक्षों को राजनीतिकरण न करने के दिए निर्देश। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण की बैठक। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर बारिश से शारदा, घाघरा और गंडक नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और आवास की चाबी भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर के विकास के साथ बाराबंकी के विकास के भी नए द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।
5: हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर, और आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको दे करके जाएगा।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाने और सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर परियोजना को समय बद्ध रूप से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले में एसआईटी के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा ताकि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने के निर्देश भी दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अपराध का एक साधारण मामला है और न्यायालय का काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए प्रदेश

0: सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संवेदनशील स्थानों सहित सभी प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा की गई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के तय नियमों का पालन करते हुए कांवड़ की ऊंचाई, डीजे की आवाज और समेत अन्य पहलुओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
1: इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, कावड़ की हाइट, कावड़ के वॉल्यूम लेवल, डेसिबल और इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, नई व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ कावड़ के श्रद्धालु हैं उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि कावड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि सबके
0: संवाद रहे, लेकिन साथ ही साथ अव्यवस्था न हो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत आईआईटी कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन पर नवाचार और एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इकोसिस्टम इकोजेन की स्थापना की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर भंडारण, परिवहन, उपयोग और विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई 2026 कर दी गई है। इच्छुक हज आवेदक हज कमेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज यात्रियों का चयन डिजिटल रैंडम सिलेक्शन प्रक्रिया से 30 जुलाई 2026 को हज हाउस मुंबई में किया जाएगा। चयनित हज यात्रियों की सूची हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में देशभर के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता के लिए 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग के सीजन 4 के टिकट लॉन्च किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रही है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए, विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष रूप से उन्होंने ख्याल रखा है। स्पोर्ट की नई नीति लागू करके स्पोर्ट्स पर्सन को पुलिस में, अन्य सभी विभागों में सरकारी नौकरी देने का, और हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें कि उनको डिप्टी एसपी और तहसीलदार तक नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
0: यूपी T20 लीग सीजन 4 का आयोजन 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इस बार लीग का आयोजन लखनऊ और कानपुर में किया जाएगा। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज ग्रेटर नोएडा में सीबीएसई नॉर्थ जोन की लॉन टेनिस और शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देशभर से 772 शूटिंग खिलाड़ी, 742 लॉन टेनिस खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का सशक्त आधार है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी और अयोध्या में

0: घाघरा और कुशीनगर में गंडक खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 5 अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संत कबीरनगर जिले में भी एक पुराना मंदिर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा एससीआर के विकास से होगा बाराबंकी का विकास। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में संबंधित पक्षों को राजनीतिकरण न करने के दिए निर्देश। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने की बैठक। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर बारिश से शारदा, घाघरा और गंडक नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

सांझ की बेला सुरों का कारवां, गीतों में सजा हर दिल का जहां, अपनों की फरमाइश अपनों का साथ, संगीत बिखेरे खुशियों की सौगात। शाम सुन प्रोग्राम में सभी सुनने वालों का अरविंद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। इस सुरीली महफिल में शामिल हैं आपके अपने व्हाट्सएप संदेश, आपकी पसंद और आपके मन पसंद फिल्म गीत। देश विदेश से जुड़े श्रोताओं ने अपने संदेशों के साथ जिन गीतों की फरमाइश भेजी है उन्हें लेकर हम उपस्थित हैं आपकी इस संगीत में शाम को और फिर यादगार बनाने के लिए। तो आइए मुस्कुराइए, अपनों के साथ इस शाम का आनंद उठाइए और सुरों के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ रहिए। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का ये सिलसिला और आपको सुनवाते हैं बहारें फिर भी आएंगी का ये गीत आशा भोसले की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में बाहरें फिर भी आएंगी फिल्म का ये गीत। सेहबान रिजवी की ये रचना थी, ओपन अय्यर का संगीत निर्देशन था। और इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश भेजा था रश्मि झरना, भरत कुमार, राजकोट गुजरात से। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे और लाडली चौबे। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खंडे, रजनी खंडे, तुषार और समीर खंडे का संदेश। हिमांशी, अरुणा, क्रियांश, पवन और सारे परिवार के सदस्यगण, मंडी रामदास मथुरा के श्रोता हैं। पाकुड़ झारखंड से जुड़े हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुदासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद और उनके साथ हैं बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल के श्रोता मुन्नो भगत और गुड्डी भगत। नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। धाड़ी नांद्रा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठी, संदीप और अमूल बाठी। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज और पी आर जैन का संदेश मिला है। मुंदीक चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। मस्तानपुरा से पूर्णा जंक्शन के श्रोता अनंता भगत, तरुणा चेतन और सुलोचना भगत। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से एक और संदेश गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर का। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और गौरी सुरलकर। पैंठण से शेख चांद, शेख फुरखान, शेख गुफरान, शेख जकिया, अदनान और रुमान। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर का संदेश मिला है। आइए अब आपको सुनवाते हैं बहारों की मंजिल फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। शब्द रचना मजरूह की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

बाहरों की मंजिल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरों का लिखा हुआ गीत था, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। सरगांव बाजार छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम और ज्योति शिवांश वर्मा का संदेश में मिला है। बिजनौर से मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि और मायरा सुरोशे। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा, सुच्चा पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव इनके साथ हैं। नर्मदा पार्क मंगल वेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल। पैठर से एक और श्रोता जुड़े हैं, डॉक्टर सुरेश जाधव और इनके साथ हैं इनके परिवारीजन अनीता जाधव, आरती प्रसाद, सोनल और सिया जाधव। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और शिवन्या, इनके साथ अनु। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागुड़े, योगिता हागुड़े, कुमाली प्रियाली हागुड़े, पार्थ और इनके परिवारी चल। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता विद्यार्थी, राकेश विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय, ओम, गुंजेश, रिया कुमकुम, कुमारी साक्षी, अक्षयलाल, बुल्कीवली और फल नझा। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, विजया ताड़े। जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने और पीएस नवानकर।

बिहार से मोहम्मद शबीर परवाना, मोहम्मद साजिद परवा अली, मोहम्मद जाहिद अली और शाहिद अली। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा नाज, असद अरहम और इनके परिवारीजन। बुलढाणा महाराष्ट्र से राजमाता नगर के श्रोता हैं नरेंद्र नरवाड़ी, ज्योति आकांक्षा और आकाश नरवाड़ी। गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, कंचन कुसुम और जूली जगदीश जोरीन के साथ। बागपत से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया। तिरुपति नगर नांद्रा से संतोष वसानी, उषा वसानी, ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। हरिभाव बेड़े, अनिकेत सोनवड़े, शुभांगी श्रवण और अनीता बिड़वे श्रीरामपुर महाराष्ट्र के श्रोता। कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत, सुरेश चौरसिया, फरुखाबादी। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, मुरली, नीरव, उमेश, प्रमिरा, केवरा और राजेश्वरी। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमीरपुर के श्रोता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा रही हैं आशा भोसले की आवाज में सुजाता फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है मजरू ने और धुन तैयार की है एसटी बर्मन ने।

आशु भोसले की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरूह और संगीत एस टी बर्मन का था। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत रोहिणी और इनके परिवारीजन। सरगांव बाजार छत्तीसगढ़ से नसीम मोहम्मद हबीब और इरफान मोहम्मद। ऐशबाग पीली कॉलोनी के श्रोता हैं। राजनगर कांति निकेतन से कांति, कुशेश्वर गुप्ता, रुद्र गुप्ता, शारदा रागनी, रीता माला और साक्षी आफरीन के साथ। जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आर्थक, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, राहुल खुराना, रचिता, केशु और रिधान। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। महोबा के श्रोता हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत। बठिंडा से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी, तानिया नारंग। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोदवड़े, अनीता और रमेश राव। खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम और अक्षय सेन। खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। कांकेर संबलपुर के श्रोता हैं फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगवल्ला चौक जालंधर से और नेपानगर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। और अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म दिल ने फिर याद किया। फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में जी एल रावल का लिखा ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दिल ने फिर याद किया। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, जीएल रावल का लिखा हुआ है, सोनी कोमी का संगीत निर्देशन था। गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से किशोर सबलानिया, सावित्री सबलानिया और सुमन सबलानिया और इनके साथ अंशु। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, गुलफराज और फरदीन सुहान अरजान अबान, सोनाली मोनिका और रानू जबलपुर मध्य प्रदेश से, मुजफ्फरपुर बिहार से राज आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत कौर, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवकिशन, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहरा जहां, गांव लोहगढ़ से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकरा रिवाड़, पैंठड़ से आसमा अंजुम और खुशी इनके साथ लैबा, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष मुर्रेकर, भिवानी से कृष्णा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा, बुलढाणा से भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी समर्थ दादा देठे पाटिल, कुमारी सानिका देठे, अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और इनके परिवार, उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक,

महोबा उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनके परिवारिक जन। बहुत सारे संदेश हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अब समय आपसे विदा लेने का हो रहा है। फिलहाल इस प्रोग्राम को समाप्त करने की मुझे यानी अरविंद को अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आपसे कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना और तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों

से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि NCS परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र MCC स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई।
सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंगकीमा।

राजस्थान से भाजपा के डॉक्टर सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा, कोंकल संगमा, डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रकाश चेक बड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मानसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में चार दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाही रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की तिजोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया, हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है।
मैं सदस्यों से आग्रह करता

कहता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

जगह धरा का लाल कि अब क्यों सोएगा, समवेत सुर में अभी आप सुन रहे थे चंद्रदत्त इंधु की ये देशभक्ति परक रचना। आइए अब सुनते हैं सत्यकाम विद्यालंकर की ये देशभक्ति परक रचना समवेत स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। इसी के साथ देशगान का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम किसी एक चर्चित फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत आपको सुनवाते हैं और उस फिल्म की कहानी उसके कलात्मक पक्ष से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज की हमारी प्रस्तुति है वर्ष 2018 में प्रदर्शित ऐतिहासिक फिल्म पद्मावत। निर्देशक संजय लीला भंसाली की ये फिल्म मलिक मोहम्मद जैसी के महाकाव्य पद्मावत से प्रेरित है। फिल्म में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती, शाहिद कपूर ने महारावल रतन सिंह और रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई है। श्रोताओं, ये कथा है साहब साहस, सम्मान, प्रेम, त्याग और स्वाभिमान की। सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का विवाह मेवाड़ के शासक रतन सिंह से होता है। उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व की चर्चा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचती है। सत्ता और महत्वाकांक्षा के वशीभूत खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अनेक संघर्षों के बाद परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि रानी पद्मावती सहित चित्तौड़ की वीरांगनाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर का मार्ग चुनती हैं। फिल्म का मूल संदेश यह है श्रोताओं कि आत्मसम्मान और मर्यादा किसी भी साम्राज्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का पहला ये मीठा सा गीत। और श्रोताओं, ये गीत अलाउद्दीन खिलजी की भावनाओं और उसकी बेचैन मनःस्थिति को संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। अरिजीत सिंह की प्रभावशाली आवाज और संजय लीला भंसाली के संगीत ने इस गीत को एक और विशिष्ट पहचान दी है।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की प्रस्तुति है फिल्म पद्मावत। श्रोताओ, फिल्म की भव्यता केवल उसके दृश्यों में ही नहीं है, बल्कि उसके संगीत, वेशभूषा और राजस्थानी संस्कृति के सुंदर चित्रण में भी दिखाई देती है। प्रत्येक गीत कहानी को आगे बढ़ाने के साथ साथ पात्रों के मनोभावों को भी व्यक्त करता है। प्रस्तुत है फिल्म का ये दूसरा गीत, जिसमें महारावल रतन सिंह की दृष्टि से रानी पद्मावती के सौंदर्य, गरिमा और व्यक्तित्व का अत्यंत कोमल चित्रण किया गया है। और ये गीत प्रेम की पवित्रता और दाम्पत्य संबंध की आत्मीयता को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करता है।

अब समय है फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत घूमर का, आइए सुनवाते हैं। श्रेय घोषाल और स्वरूप खान की आवाजें। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर इस गीत में पूरे वैभव और उल्लास के साथ प्रस्तुत किया गया है। राजस्थानी लोक धुनों की मिठास, भव्य नृत्य संयोजन और श्रेय घोषाल की मधुर आवाज ने इस गीत को अत्यंत लोकप्रिय बनाया है।

नीति मोहन की आवाज में आपने पद्मावत फिल्म का ये मीठा सा गीत सुना। श्रोताओं, फिल्म पद्मावत की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी भव्य प्रस्तुति। राजपूती परंपराएं, स्थापत्य, परिधान, संगीत और लोक संस्कृति को बड़े आकर्षक ढंग से फिल्माया गया है और यही कारण है कि इसके कई दृश्य और गीत दर्शकों के मन में लंबे समय तक बसे रहते हैं।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से में फिल्म पद्मावत के तीन यादगार गीत सुनने का सिलसिला यहीं संपन्न होता है। प्रेम, शौर्य, स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति की भव्य प्रस्तुति से सजी इस फिल्म ने अपने संगीत और उत्कृष्ट अभिनय के माध्यम से दर्शकों के मन में एक विशेष स्थान बनाया है। आशा है आज की यह संगीतमय प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मुझे यानी अरविंद कुमार को अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक ही फिल्म से की एक नई कड़ी में किसी और यादगार फिल्म और उसके सदाबहार

0: Gaëtan Cassato. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह

0: मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और राजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी

0: भारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55,49,00,000 उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314,00,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में

लता मंगेशकर की आवाज में परख फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र का लिखा हुआ यह गीत था, संगीत निर्देशन सलिल चौधरी का था। सुहाने तरहने कार्यक्रम की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म अजनबी से। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत आरडी बर्मन का, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अजनबी फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की कलम से निकले हुए ये शब्द थे जिन्हें सुरबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। सुहाने तराने कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश आपके रेडियो सेट पर। आप सुनेंगे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को प्यासा सावन फिल्म के लिए। संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में प्यासा सावन फिल्म का गीत आपने सुना। संतोष आनंद के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को है। हमारा अगला कार्यक्रम आपसे कुछ ही पलों में होगा।
1: कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भरत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0111-231-0481, 0111-231-1-7, 0111-231-4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है?
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेस होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूँ आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी जरूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फराज अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फोन करेंगे और उनके मन में कोई यार बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोगों जहाँ पर वो अटक गए हैं, जहाँ उनको डाउट है।
0: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
1: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है एक टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज़ से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपए वहां शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते। कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं, तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
0: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?

बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहद आपने. देखिए ये जो पांच मैंने इनकम्स बताई थी, उन पांच इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं, तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए. इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना, तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है. और दो चीज़ जो मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा, एक फॉर्म 26 AS होता है.

0: एक फॉर्म 26AS होता है,
1: जी.
0: मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी अपनी पूरी
1: जी
0: इनकम से, तो उसको ज़रूर चेक करें. और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है, तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं, प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पे मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए, ये सब. अब देखिए इसमें ज़रूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताने रहूँगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने ज़रूरी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन और ये फिगर कहाँ से ली है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे.
1: बिल्कुल. अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और FD पर अगर TDS कटता है तो ITR इसमें कैसे दिखाएंगे?
2: देखिए कि वैसे तो एक आपका TDS जो है FD के ऊपर वो 40,000 रुपये तक अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50 की लिमिट है, लेकिन उसके बाद जो TDS है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि ऑलरेडी 10% कट चुका है. अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं
1: जी. और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित झा. जी अमित जी.
3: हाँ नमस्कार.
1: नमस्कार
3: सर. कोहली सर को नमस्कार. सर
0: नमस्कार. अमित जी
3: सर, मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
0: अच्छा अच्छा. जी जी जी.
3: हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी इम्प्लॉय या गवर्नमेंट इम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो XYZ
0: जी,
3: तो सर तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ
0: जी.
3: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर? धन्यवाद.
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे. करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है, हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और बिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं. तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रजीम में उससे नीचे है, फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है. परंतु अगर आप वो जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई TDS कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है, डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. और रिटर्न फाइल जैसा फारद ने शुरू में बताया था कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारे नहीं भी टैक्सेबल होता है तो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर जरूरी नहीं. आप जो बता रहे हैं हमें, अगर आपका 12 लाख रुपए से कम का है तो आप 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं ऑप्शन.
1: शरद जी, छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए ITR में कोई छूट है क्या?
0: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं, और एक सीनियर सिटीजन के लिए ये होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स पे करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस की वो बिजनेस इनकम है। कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन्स के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो सीनियर सिटीजन्स हमारे यहाँ के हैं

0: उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं। और मैं तो आज शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं, और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं, और बकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फरहत बहुत लंबा दिख सकता है।
1: ये बात एकदम सही कह रहे हैं, हर साल हम लोग भरते हैं, लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में संशय रहता है, डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए। तो
0: और मैं उसी पे आ रहा था, तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सिर्फ ये कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है। आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सैटिस्फैक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी
1: जी, एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन। जी मकसूद जी,
2: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
0: जी हुसैन साहब बताइए।
2: ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है
0: जी।
2: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 20-25 लाख तक पहुँच जाता है जी। अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताएं सर जी।
0: नहीं, जन सेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब कि वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा, तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी, तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फरहत मैं ठीक समझ रहा हूँ, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे हैं, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
1: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। जी रशीद जी
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: हाँ, मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है
0: जी,
3: तो क्या 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ
0: जी,
3: इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिज्यूम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर, थैंक यू।
0: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को पहले आपके मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था ATTTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पस ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हां, आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया, सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ, उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा, पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ही होता
1: है। जी बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या ITR के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
4: नहीं, ITR के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो जरूरी हो गया। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
0: और मैं आपकी इजाजत हो फर

0: तो इसमें इसमें कुछ अश्विनी इजाजत दें तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो एम एक हल निकला है, व्यक्ति लाके उसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में लाके और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। जीएसटी भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन जीएसटी शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं जब छोटा काम होता है। जैसे जैसे काम बढ़ता है तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
1: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो जीएसटी नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको जीएसटी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता दे।
0: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
2: आप लोगों से हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिस्टनर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से एनपी सिंह जी।
3: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मेरा नाम एनपी सिंह है, मैंने एब्रीवेशन बताई थी नागपुर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
3: शरद जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
0: अच्छा, प्लेजर सर।
3: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर।
0: हाँ जी।
3: एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
0: जी।
3: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है, अनियमितता को छोड़कर ये लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा, आई एम सो सॉरी, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रखें।
0: अच्छा,
3: और कौन सी ऑप्शन बेटर है
0: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिनको जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम कैस बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क ये, पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है। पर अब एक डेटा ये कहता है, और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है अब की बार, जो जैसा लोग बता रहे हैं। तो न्यू रिजीम उनके लिए है जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शंस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है एनपीएस उसको छोड़ के, बाकी सारी डिडक्शंस न्यू रिजीम में हटा दी गई है। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको यह सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम्स है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश करूंगा।
2: अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं?
1: मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे LIC में है, NSE में है, FD है या इस तरह की, तो वो या PPF है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
2: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक है विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने

0: परिवार को पैसा भेजता है तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं, और मेरा ये प्रश्न है।
1: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, तो वहां पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में दो तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम एनआरआई कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये शख्स जो है भारत से बाहर ही रहते हैं पर वो पैसा अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं, तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है, उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति को जो एनआरआई है उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहां पर भी इनकम है फरहद, वहां पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में एक डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है जिससे उसको डबल डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
2: अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी एनजीओ चलाते हैं और पिछले दो साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से एनजीओ को क्लोज करना चाहते हैं, तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
1: देखिए, अगर तो एनजीओ रजिस्टर्ड है और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है फिर तो भरना पड़ेगा। हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि एनजीओ फरहद दो तरीके के होते हैं। एक एनजीओ होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है, क्योंकि एनजीओ आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं है, आप तो जनसेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी, पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड एनजीओ हैं तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं, आपके सवाल से एक बहुत जरूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने तीन साल से फाइल ही नहीं करी, तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई रह गई जाने में अनजाने में? तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। पर उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, तीन साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, दो साल पुरानी है तो 50%, तीन साल पुरानी है तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे तब आपको सरकार यह इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है। और वो फिर कंपलसरी, जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह, थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
2: शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश जी। जी प्रकाश जी।
3: भरत जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
1: सर हमारा भी सहप्रेम,
2: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
3: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
1: जी
3: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे क्या कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच में कोई फर्क है, या क्या थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें?
4: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हो एडिशनल वैसा कुछ नहीं है।
2: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से, रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग ITR दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस?
1: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्द होता है किसी की गलतियां निकालना, और आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया, और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये होदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, क्योंकि गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियां को बयान करने में चला जाएगा।
2: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
4: ऐड करूंगा इसमें एक कि कुली जी, अगर ये अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी

0: नहीं होती, अप्रूव नहीं होती
1: नहीं, उसमें उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है, पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता,
0: नहीं ठीक करता, और वो फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।
1: नहीं नहीं, वो हो मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी, इनकम की
0: गलत है, लेकिन तो, जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप,
1: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं, और फिर वो 26AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर, मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है।
2: ध्यान से भरिए अपनी हर एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए, तो शायद आप गलती करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
3: नमस्ते मैडम।
2: नमस्कार
3: सभी पैनल को नमस्ते।
1: नमस्कार
3: सर, पिछले साल जिस यूजर आईडी, तो यूजर आईडी से ही होता है, जिस पासवर्ड से हम भरे थे वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो इसमें लिख क्या रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया,
1: तो
3: अनलॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ, रेगुलर आईटीआर भरने वाला।
1: तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर, नहीं तो तुरंत मोबाइल पे ओटीपी आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं। आप क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक सीपी ग्राम्स करके वेबसाइट है, उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और सीपीसी बैंगलोर है, उसके फोन नंबर भी है, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है, तो सीपी ग्राम्स का एक ई निवारण पर, ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए सीपी ग्राम्स में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं, और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा, या मैं आपको सलाह दूंगा सीपीसी बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
2: जी शरद जी, हमारे पास भी समय बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
2: नमस्कार
4: जी, मैं रवि जवाली हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो दो तीन साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पर क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर सर मैं ये जानना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
1: अरे अरे रवि जी, आप क्यों क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत तो उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का, मतलब आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है आप नहीं भर रहे हैं, तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा, पेनल्टीज बहुत भारी है। मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूं, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले दो सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
2: और अब थोड़ा सा समय बचा है, तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
1: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फरद ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और की, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न आ रही है आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इंफॉर्मेशन को चेक जरूर कर।
2: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करेंगे, 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए।
2: जी, और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब।
1: शुक्रिया,
2: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत, और हमने सीखा आज की ITR सिर्फ टैक्स का कागज नहीं है, ये आपकी आर्थिक पहचान भी है, तो जरूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

0: The Delhi station of Akashwani. Please stand by for our next broadcast. You will now listen to the proceedings during the question hour in Lok Sabha today.
1: माननीय सभा सदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने छह पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एनाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण,

0: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा यह अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर एक।
2: प्रश्न संख्या एक। क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण लिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि युवा सबसे प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में

0: अशोक संस्थान के रूप में महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा। और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और उसमें माननीय सदस्यों ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी वो सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
1: माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे अमर प्रेम फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत राहुल देव बर्मन का था। फिल्म संगीत की अगली पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म प्रेरणा से। आवाज प्रीति सागर की है, गीतकार हैं मोती सागर और संगीत विजय कुमार का है।

अभी आप सुन रहे थे प्रीति सागर की आवाज में प्रेरणा फिल्म का गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बरसात की रात फिल्म का ये गीत। साहिर के बोल हैं, रोशन का संगीत निर्देशन।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में बरसात की रात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी की रचना थी, रोशन का संगीत निर्देशन था। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मी शंकर की आवाज़ में, बावर्ची फिल्म का गीत, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत निर्देशन।

लक्ष्मी शंकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे बावर्ची फिल्म का गीत। कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत निर्देशन था, और इसी के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 और 48 सेकंड में ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए चंद्रमोहन भट्ट का सितार वादन, राग है मारो बिहाग, तबले पर संगति गुलाम साबिर की है।

अभी आप सुन रहे थे चंद्रमोहन भट्ट का सितार वादन, राग था मारो बिहाग, तबले पर संगति गुलाम साबिर की थी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचारों के पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के

0: सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्चस्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, Question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
4: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the

मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। इस मीटर पर प्रसारण अब समाप्त होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर आपके